मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार बुधवार, दिनांक 3 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में देशगान।

कार्यक्रम आराधना में आइए सुनते हैं गोपाल सुखदेव और कौशलेंद्र के गायन स्वरों में ये अंतिम भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है शांति। संकलन एवं वाचन स्वर है पद्मनाभ शर्मा।
1: शांति प्राप्त करने के लिए पहली और मुख्य बात यह है कि हम इसे पूर्ण रूप से जान जाएं कि इस भौतिक जगत में हमारा कौन सा स्थान है और सृष्टि से हमारा क्या संबंध है। इसके प्रत्यक्ष होने पर एक ही विचार हमारे सम्मुख रह जाता है कि हम इस ब्रह्मांड के ही नहीं बल्कि उसके संचालन करने वाली शक्ति के एक अंश हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का एक कण भी हमसे अलग नहीं है, उसकी हानि लाभ से हमको दुख और सुख होता है, उसी तरह संसार के प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी हमारा ही है। हम सब मिलकर एक अंग बनाते हैं जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। जब तक यह भ्रम हमारे अंदर रहता है कि हम अलग हैं और अन्य सब जीव अलग हैं, तब तक हमको दुख रहता है और हम राग द्वेष में फंसकर उनसे लड़ा करते हैं तथा अपने और दूसरों के लिए अशांति का आह्वान किया करते हैं। हम अशांत रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। जिस समय हमको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सब हमारे हैं और हम सबके हैं, तभी शांति हमारे पास आने लगती है और हमारी हो जाती है। इसे ख्याल को पुख्ता करने के लिए तथा उसको अनुभव में लाने के लिए बड़े ही त्याग की आवश्यकता होती है। ये त्याग वाणी से कहने मात्र का नहीं होता, बल्कि दिल का होता है। हमारा हृदय पूर्ण रूप से ऐसा बन जाना चाहिए कि हमारा जीवन और हमारे काम दूसरों के लिए है, न कि अपने लिए। वास्तव में स्वार्थ बुद्धि का त्याग ही त्याग कहलाता है, न कि कार्यों का त्याग। गीता में कहा गया है, जो कामनाओं को त्याग कर निष्प्रिय होकर ममता और अहंकार को छोड़कर अपने कार्य किया करते हैं, उसी को शांति प्राप्त होती है। हम कर्म करते हुए, चाहे वो कर्म सांसारिक हो या पारमार्थिक, जब तक अपने लाभ का ख्याल दिल में रखेंगे, जब तक ममता और अहंकार की धुरी पर हमारे कर्मों का चक्र घूमता रहेगा तथा जब तक हम अपने को दूसरों से अलग समझते हुए सुख दुख के बंधन में जकड़े रहेंगे, तब तक शांति हमारे भाग्य में नहीं आ सकती। शुद्ध विचारों को अपने में भरना, उनके अनुसार जीवन बनाना, हर समय उसकी जांच पड़ताल करते रहना तथा अपनी उन्नति के लिए चिंतित रहना ही शांति और संतोष प्राप्ति के साधन हैं। ये साधन हमें आप्त महापुरुषों या गुरुजनों के द्वारा मिल सकते हैं। उनके समीप बैठने से ही हमको ईश्वर पर विश्वास हो सकता है और हम शांत और निश्चिंत जीवन की ओर अग्रसर होते जाते हैं। साधारण जीवन बिताने वाले भी ऐसे लोग जो स्वार्थी नहीं हैं तथा जिनका काम दूसरों को ही सुखी बनाना है, वे दूसरों की अपेक्षा खुश दिखाई देंगे। उन्हें शोक बहुत कम होता है और वे अपनी इसी धुनी में खुद को भूलकर सेवा भाव अपना लेते हैं। पर सेवा ही अहंकार और ममता के त्याग की सीढ़ी है और सुख संतोष प्राप्त करने के लिए औषधि है। जो लोग अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही कमाते हैं, वे दुखी और असंतोषी रहेंगे जब तक वह अपने स्वभाव को बदल न डालेंगे। केवल अपने लिए

0: सुख ढूंढने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, ये निश्चित है। जब हमको इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि ये सारी दुनिया हमारे उस जीवन में शरीक है जो हमारे अंदर होकर बह रही है, उस समय हम समुद्रवत गंभीर और शांत हो जाएंगे। चुलबुली चंचल स्वभाव वाली नदियां आएंगी और हमसे मिलते ही अपने स्वभाव को त्याग कर हमारी जैसी बन जाएंगी। इस अवस्था में पहुंचकर हम खुद भी शांत रहेंगे और दूसरे अपने मिलने वाले को भी शांत कर देंगे। तात्पर्य यह है कि वासनाओं के त्याग से ही शांति मिलती है, इसी शांति को असली ज्ञान कहना चाहिए। यही शांति है, मुक्ति है, भगवत दर्शन है। हमको मृत्यु से पूर्व इस शांति को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसकी प्राप्ति का साधन निष्काम उद्योग है, इसके द्वारा ही यह सुलभ होती है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।
1: शांति विषय पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। संकलन एवं वाचन स्वर था पद्मनाभ शर्मा का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रामचरितमानस का गायन, भाग 83। मुख्य गायन स्वर है सुरेश वाटकर का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन, और लीजिए प्रस्तुत है कृषि से संबंधित सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: नीम कोटेड यूरिया सामान्य यूरिया का एक उन्नत रूप है, जिसके दानों पर नीम के तेल का लेप अर्थात कोटिंग की जाती है। भारत सरकार ने पारंपरिक यूरिया के दुरुपयोग को रोकने और खेती में नाइट्रोजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए देश में 100% नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अनिवार्य किया है। इसमें 46% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। सामान्य यूरिया पानी में बहुत तेजी से घुलता है, जबकि नीम कोटेड यूरिया मिट्टी में बहुत धीरे धीरे घुलता है। इसी प्रकार सामान्य यूरिया निश्चलन और गैस बनकर 50-60% तक बर्बाद होता है। नीम कोटेड यूरिया नाइट्रोजन का नुकसान 30-40% तक कम करता है। सामान्य यूरिया कीटों को आकर्षित कर सकता है, उसी प्रकार नीम के गुणों के कारण अवतरित होने के कारण प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। सामान्य यूरिया रासायनिक उद्योगों में अवैध रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि नीम कोटेड यूरिया कड़वाहट के कारण उद्योगों के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है। फसलों को लंबे समय तक नाइट्रोजन मिलने से यूरिया की खपत 5-10% तक घट जाती है। फसलों को जरूरत के अनुसार पोषण तत्व मिलने से पैदावार में 10-15% तक की बढ़ोतरी होती है। नीम में मौजूद तत्वों के कारण फसलों को हानिकारक कीटों और फंगस से बचाव होता है। नीम कोटेड यूरिया के कारण मिट्टी के नाइट्रीकरण को धीमा कर पर्यावरण और भूजल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। गैर कृषि कार्यों में इसका अवैध इस्तेमाल नहीं होने के कारण इसकी उपलब्धता आसानी से होती है। सब्जियों में नीम कोटेड यूरिया का सही इस्तेमाल पौधों के विकास और भारी पैदावार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जियों में यूरिया को एक साथ डालने के बजाय हमेशा 3-4 भागों में बांटकर देना चाहिए। पहला भाग बुआई या रोपाई के समय, खेत तैयार करते समय यूरिया की कुल मात्रा का 1/3 भाग फास्फोरस और पोटाश के साथ बेसक खुराक के रूप में मिट्टी में मिलाना चाहिए। दूसरा भाग रोपाई के 20-25 दिन बाद, जब पौधे अपनी वानस्पतिक वृद्धि शुरू करें तब नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए देना चाहिए। तीसरा भाग फूल आने के ठीक पहले, रोपाई के 40-45 दिन बाद, ताकि पौधों में अधिक शाखाएं और फूल आ सकें। चौथा भाग फल बनते समय ऐच्छिक है। लंबी अवधि की सब्जियां जैसे मिर्च बैगन में पहली तुड़ाई के बाद हल्की मात्रा में देना फायदेमंद होता है। कम अवधि वाली सब्जियों में जैसे भिंडी लौकी तोरई में 35-40 किलोग्राम प्रति एकड़ पूरी फसल अवधि में देना उचित है। इसी प्रकार लंबी अवधि वाली सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैगन में 50-60 किलोग्राम प्रति एकड़ पूरी फसल अवधि में देना उपयुक्त होता है। ड्रॉप ड्रेसिंग यूरिया को हमेशा पौधों की जड़ों से 2-3 इंच दूर गोल घेरा बनाकर डालना चाहिए। दानों को सीधे मुख्य तने या पत्तियों पर ना गिरने दें, अन्यथा पत्तियां जल सकती हैं। यूरिया डालते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यूरिया डालने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें। सब्जियों में ज्यादा यूरिया डालने से पौधे बहुत कोमल और रसीले हो जाते हैं, जिससे उनमें कीटों और फंगस का हमला तेजी से बढ़ता है। अतः अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए।

0: नीम के कारण यह दीमक और अन्य कीटों से फसल की रक्षा करता है। साथ ही साथ 5 से 10% तक कम यूरिया की आवश्यकता होती है, जिससे किसानों की लागत भी कम होती है। नाइट्रोजन के नुकसान को कम करके यह भूजल को प्रदूषण से भी बचाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। समय होगा सुबह 7:00। 7:15 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 7:30 पर। 8:30 पर शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर वंदन आपके सामने प्रस्तुत होगा। 9:00 आप सुनेंगे गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुंजन आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:15 पर। आपकी पसंद फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:00। 12:00 आप सुनेंगे एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही शीर्षक पर आधारित चयन आप सुन सकेंगे सुबह 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे और ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाई आप सुनेंगे सुबह माफ कीजिएगा आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 पर। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इसका आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे शाम 5:00। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे युवा सोच, मुझे कुछ कहना है और फिल्म संगीत। शाम 6:20 पर लोक गीतों का कार्यक्रम गोधूली प्रसारित होगा और 6:30 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का। शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा प्रसारित होगा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। रात 8:00 सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश इसका प्रसारण किया जाएगा। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात 9:15 पर। ईमेल की गूंज फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जो सोशल मीडिया पर आधारित है आप पुनः सुन सकेंगे रात 10:00 और मनभावन प्रस्तुत होगा आपके लिए रात 10:30 पर। तो श्रोताओं ये तो थी हमारे केंद्र के द्वारा आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए सियाराम और साथी के गायन स्वर में ये जलसा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंजे जंगल। लीजिए प्रस्तुत है चैन साय और साथियों के स्वर में ये सरगुजिया रिंजा कर्मा गीत।

इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम

कार्यक्रम सुगम संगीत में कतील राजस्थानी की लिखी ये गज़ल पेश है भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में।

0: इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: प्राप्त सूचना और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।

सुप्रभात कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूं स्वाति। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में भी चलते फिरते सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और आइए कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत लिखा है इंदीवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

साथियों, आप सुन रहे हैं नमस्कार सरगुजा। उत्कर्ष योजना की प्रवेश परीक्षा स्थगित। कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए नई तिथि का इंतजार 26 जुलाई को प्रस्तावित है। लिखित परीक्षा फिलहाल टल गई है। शासन जल्द जारी करेगा संशोधित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, जिसे पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना के नाम से जानते थे, इसके अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया एवं आवंटित संस्थाओं के इम्पैनलमेंट कार्य में विलंब होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 26 जुलाई 2026 रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इस संबंध में सूचित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं किया जाए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आवंटित संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शासन स्तर से प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा की नई तिथि एवं आगे की प्रक्रिया की जानकारी पृथक रूप से जारी की जाएगी। प्रशासन ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे उनके शैक्षणिक और प्रतिस्पर्धात्मक विकास को नई दिशा मिलती है। शासन द्वारा नई परीक्षा तिथि एवं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में सुनते हैं अब ये अगला गीत। फिल्म गाइड से स्वर है लता मंगेशकर का, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत आरडी बर्मन का है। पर इसके पहले सुनते हैं ये विज्ञापन।

0: भैया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा स्वाति के साथ। अन्य समाचार इस प्रकार हैं। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। आईटीआई जनकपुर में कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है। एमसीबी 2 जून 2026 जिले के युवाओं के लिए रोजगार परक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध हुआ है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई जनकपुर में सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक प्रवेश के लिए निर्धारित वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जनकपुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि संस्थान में कोपा SCVT एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 48 सीटें, विद्युतकार SCVT द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20 सीटें और सिलाई टेक्नोलॉजी SCVT एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 40 सीटें उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण में 16 जून से 22 जून तक प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी और 23 जून से 25 जून तक चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा। दूसरे चरण में 26 जून से 3 जुलाई तक द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी और 4 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी। तृतीय चरण में 8 जुलाई से 22 जुलाई तक तृतीय चयन सूची जारी की जाएगी तथा 13 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेश दिए जाएंगे। आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना और कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची के अनुसार की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अपने भविष्य को तकनीकी कौशल के माध्यम से संवारना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआई जनकपुर एक उत्कृष्ट विकल्प है। प्राचार्य ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया में भाग लें और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें। प्रवेश एवं पाठ्यक्रमों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी निकटतम आईटीआई अथवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जनकपुर से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म प्यासा सावन से, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 6 जून को कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन बलरामपुर, 1 जून 2026 अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम ने जानकारी दी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आगामी 6 जून 2026 को पूरे देश में कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी 5 शाखाओं द्वारा कृषि ऋण आउटरीच कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंप के माध्यम से कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों से संबंधित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण किया जाएगा। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु ऋण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ग्रामीण भंडारण, फूड प्रोसेसिंग, पीएमएफएमई, वेयर हाउस, राइस मिल और एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। अग्रणी जिला प्रबंधक ने जिले के किसानों, कृषि उद्यमियों और ग्रामीण व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की निकटतम शाखा में संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और कृषि ऋण आउटरीच कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कैंप कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। चार जून को होगी प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा। जिले में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11,841 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

अंबिकापुर 2 जून 2026, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आगामी 4 जून 2026 को प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा पूर्वान्ह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित की जाएगी। जिले में परीक्षा कुल 36 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी और परीक्षा में कुल 11,841 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे ताकि फ्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। फुटवेयर में केवल चप्पल पहने, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, पाउच, बेल्ट, स्कॉर्फ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ये सभी ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षार्थी केवल नीले या काले बॉल पेन साथ में ही लेकर जाएं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का ये अंतिम गीत।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम।
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार। सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर

0: 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है।

0: है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, Hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1.

नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वीर वंदन, शहीदों की गाथाओं और देशभक्ति गीतों का वो विशेष कार्यक्रम जिसमें हम स्मरण और नमन करते हैं उन वीर सपूतों को जिनके साहस, त्याग और समर्पण से भारत माँ का मस्तक हमेशा ऊंचा रहता है।

आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के उस जाबाज योद्धा की, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य, साहस और देशभक्ति का अद्भुत परिचय दिया। ये कहानी है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कंभमपति नचिकेता की, जिनका जन्म 30 मई 1973 को हैदराबाद में हुआ था। इनके विषय में हम और भी जानेंगे, पर आइए पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम है लक्ष्य, आवाजें हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और जीजय की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

वर्ष 1999, कारगिल युद्ध का दौर। देश की सीमाओं पर संघर्ष अपने चरम पर था। भारतीय वायुसेना के युवा और साहसी पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने कर्तव्य के निर्वहन में जुटे हुए थे। युद्ध के दौरान उनका विमान तकनीकी समस्या का शिकार हुआ और उन्हें पैराशूट के सहारे बाहर निकलना पड़ा। लेकिन नियति ने उनके सामने एक और कठिन परीक्षा रख दी थी। वे दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में जा गिरे और पाकिस्तान की सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। श्रोताओं, किसी भी सैनिक के जीवन का ये सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण हो सकता है। आगे क्या हुआ होगा ये जानेंगे हम, पर आइए पहले सुनते हैं ये देशभक्ति भरा गीत फिल्म सरफरोश से, जिसमें आवाजें सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की है। गीत लिखा है इसरार अंसारी ने और संगीत जतिन ललित का है।

इस गीत से पहले आज कार्यक्रम वीर वंदन में आप सुन रहे हैं वीर गाथा ग्रुप कैप्टन नचिकेता की, जब वो शत्रु देश में जा गिरे। अजनबी धरती, अनिश्चित भविष्य और चारों ओर दुश्मन का पहरा। लेकिन नचिकेता का साहस डगमगाया नहीं, उन्होंने अद्भुत संयम, धैर्य और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। एक भारतीय सैनिक के रूप में नचिकेता शत्रु देश में 8 दिनों तक युद्धबंदी रहे। कैद में उनकी स्थिति और अनुभवों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बाद में वीर नचिकेता को पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सौंप दिया गया और आज के दिन यानी कि 3 जून 1999 को अमृतसर लाहौर सड़क पर अटारी स्थित भारतीय सीमा चौकी के माध्यम से वापस भारत भेज दिया गया। श्रोताओं, वीर वंदन के अंतर्गत बातों का क्रम जारी रखेंगे, पर इनकी गाथा सुनते हुए अपनी रगों में भी जोश जगाते हैं फिल्म केसरी के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है बी प्राक की, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीतबद्ध किया है आरको ने।

वीर वंदन कार्यक्रम में आपने जाना ग्रुप कैप्टन नचिकेता की वीर गाथा, जो दुश्मन देश से वापस जब स्वदेश लौटे तो करोड़ों भारतीयों ने उनका स्वागत केवल एक सैनिक के रूप में नहीं बल्कि साहस और आत्मविश्वास की जीती जागती मिसाल के रूप में किया। नचिकेता की गाथा हमें यही संदेश देती है कि साहस वो शक्ति है जो संकटों के बीच भी उम्मीद का दीप जलाए रखती है। इस वीर सपूत को नमन करते हुए आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये अगला गीत मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म काबुलीवाला से, जिसे लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओं, इस वीर वायु योद्धा के अदम्य साहस को नमन है। इन वीर जवानों की गाथाएं हमारे हृदय में राष्ट्र की ज्योति को, राष्ट्र प्रेम की भक्ति को और भी प्रखर करती है। ये हर भारतीय के हृदय से एक ही स्वर बुलवाती है, भारत माता की जय। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म कर्मा से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम वीर वंदन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब कार्यक्रम गांधी चर्चा का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

के रायपुर केंद्र है। गांधी चर्चा, इस कार्यक्रम में सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। इस क्रम में आज सुनिए गांधी जी के परम स्नेही जोसेफ डोक के बारे में गांधी जी के विचारों का दूसरा भाग।
1: सभी लोग तो उदार दिल के होते नहीं हैं, उन लोगों के दिलों में भी भारतीयों के खिलाफ कुछ भाव तो थे ही, पर डोक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे परिचय के आरंभ ही में एक दिन मैंने इस नाजुक विषय पर चर्चा छेड़ी थी, उनका उत्तर यहाँ लिख देने के योग्य है। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, ईसा के धर्म को आपने क्या समझ रखा है? मैं उस पुरुष का अनुयायी हूँ जो अपने धर्म के लिए फांसी पर लटक गया और जिसका प्रेम विश्वव्यापी था। जिन गोरों के मुझे छोड़ देने का आपको डर है, उनकी आंखों में ईसा के अनुयायी की हैसियत में जरा भी मैं शोभा पाना चाहूँ तो मुझे जाहिरी तौर से अवश्य ही इस युद्ध में भाग लेना चाहिए और इसके

फांसी पर लटक गया और जिसका प्रेम विश्वव्यापी था। जिन गोरों के मुझे छोड़ देने का आपको डर है, उनकी आंखों में ईसा के अनुयायी की हैसियत में ज़रा भी मैं शोभा पाना चाहूं, तो मुझे ज़ाहिरी तौर से अवश्य ही इस युद्ध में भाग लेना चाहिए, और इसके फलस्वरूप यदि वह मेरा त्याग भी कर दें तो मुझे इसमें ज़रा भी बुरा न मानना चाहिए। इसमें शक नहीं कि मेरी आजीविका का आधार उन पर है, पर आप ये कदापि न समझ बैठें कि आजीविका के लिए मैंने उनसे यह संबंध किया है और वह ही मेरी रोजी देने वाला है। मेरी रोजी का देने वाला तो परमात्मा है, ये हैं केवल निमित्त मात्र। मेरा उनका संबंध होते समय हमारा उनका ये ठहराव हो चुका है कि मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप न करेगा। इसलिए आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें, मैं भारतीयों पर एहसान करने के लिए इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। मैं तो इसे अपना धर्म समझकर ही इसमें भाग ले रहा हूँ, पर असल बात यह है कि मैंने हमारे गिरजा के डीन के साथ बातचीत करके भी इस बात का खुलासा कर लिया है। मैंने उन्हें ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरा भारतीयों से संबंध रखना आपको पसंद ना हो तो आप खुशी से मुझे रुख्सत दे सकते हैं और दूसरा पादरी तलाश कर सकते हैं, पर उन्होंने इस विषय में मुझे बिल्कुल निश्चिंत कर दिया है, बल्कि और उत्साहित किया है। आपको ये कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी गोरे आपकी तरफ एक सी तिरस्कार की नज़रों से ही देखते हैं। आप नहीं जानते कि अप्रत्यक्ष रूप से वे आपके विषय में कितना सद्भाव रखते हैं। इसे तो मैं ही जान सकता हूं और आपको भी ये कबूल करना होगा। इतनी स्पष्ट बातचीत होने पर फिर मैंने नाजुक विषय पर कभी बातचीत नहीं छेड़ी। इसके कुछ साल बाद डोक रोडेशिया में अपने धर्म की सेवा करते हुए स्वर्गवासी हो गए। तब हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर उनके पंथ वालों ने अपने गिरिजाघर में एक सभा निमंत्रित की थी। उसमें काछलिया तथा अन्य भारतीयों के साथ साथ मुझे भी बुलाया गया था। मुझे वहाँ भाषण देना पड़ा था। अच्छी तरह चलने फिरने लायक होने में मुझे करीब 10-11 दिन लगे होंगे। ऐसी स्थिति होते ही मैंने इस प्रेमी कुटुंब से विदा मांगी। वह वियोग हम दोनों के लिए बड़ा दुखदायी था।

गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे गांधी जी के परम स्नेही जोसेफ डोक के संबंध में गांधी जी के विचार। श्रोताओं, अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार।

0: गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर के थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कार्यक्रम गांधी चर्चा का अनुप्रसारण हम अभी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं और चलिए श्रोताओं अब सुनते हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आपका बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज के अंक में आपके साथ मैं हूँ स्वाति। आज की तारीख में क्या है खास, आइए जानते हैं उन विषयों के बारे में जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके मनपसंद कार्यक्रम गुंजन में। 3 जून यानी कि विश्व साइकिल दिवस, इस पर कुछ बातें होंगी। साथ ही 3 जून योजना अर्थात क्या थी माउंटबेटन योजना, जिसने हमारे देश का भूगोल ही बदल डाला था, इन सब पर भी ढेर सारी बातें करेंगे। और भी कई सारी बातें हैं आपसे करने को, पर आइए गुंजन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीत लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन स्वाति के साथ। एक ऐसा साधन जो न केवल हमारी सेहत का साथी है बल्कि पर्यावरण का रक्षक भी है, बूझिए उसका नाम, समझ गए ना? जी हाँ, उसका नाम है साइकिल। आज यानी कि 3 जून को हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। साइकिल हम सभी की ऐसी दोस्त है जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक अर्थात हर उम्र में हमारी सहायक है। इससे हृदय मजबूत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, साइकिल चलाने वाले का वजन भी नियंत्रित रहता है। इतना ही नहीं, मानसिक तनाव भी कम होता है। जरा सोचिए, अगर साइकिल बोल सकती तो क्या कहती? वो यही कहती, मैं ना पेट्रोल मांगती हूँ न डीजल, न धुआं छोड़ती हूँ न शोर मचाती हूँ, मैं बस आपके पैरों की ताकत से चलती हूँ और बदले में आपको सेहत, ऊर्जा और मुस्कान देती हूँ। श्रोताओं, साइकिल कम दूरी के स्थानों के लिए आज के समय की बड़ी आवश्यकता है, जिसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा संसाधनों के घटते विकल्पों और उनके अभाव के समय उपयोग में लाया जाना होगा। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण, साइकिल बने हमारी पहचान। तो आइए, इन्हीं बातों के बीच सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
2: श्रोताओं, इस गीत के पहले आज कार्यक्रम गुंजन में आपने सुनी विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल की उपयोगिता और महत्व पर कुछ बातें। तो ज़्यादा सोचिए मत, पैडल घुमाइए, सेहत बनाइए, साइकिल अपनाइए और अपना पर्यावरण बचाइए।

श्रोताओं, 3 जून यानी कि आज का दिन हमारे भारत देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसने भारत का नक्शा, इसका भूगोल ही बदल डाला था। 3 जून योजना, इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। 3 जून सन 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने ये योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना ने ब्रिटिश भारत के विभाजन और 2 स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यही वो योजना थी जिसके अंतर्गत हमारे देश के 2 टुकड़े हुए थे। इसी प्रक्रिया के आधार पर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आप इस सत्य से परिचित हैं कि भारत का विभाजन इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक मानी जाती है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और असंख्य परिवार बिछड़ गए। श्रोताओं, इसीलिए 3 जून की ये तिथि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की राह में हुए संघर्षों और विभाजन की असह्य पीड़ा की याद दिलाती है। इन्हीं बातों के क्रम को रोकते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म आशिकी का ये गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। गीत लिखा था रानी मलिक ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इतिहास हमें यही सिखाता है कि एकता, सद्भाव और मानवीय मूल्यों की रक्षा ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। माउंटबेटन योजना के कारण इसके सामाजिक और राजनीतिक भौगोलिक प्रभाव आज इतने वर्षों के बाद भी भारत में हमें साफ दिखाई देते हैं। यहाँ अब हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सभी आपसी समझ, सौहार्द, प्रेम और भाईचारे को बनाए रखें, ताकि हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर यूं ही अग्रसर होता रहे। किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आइए अब इन बातों के बाद सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। आवाजें हैं लकी अली और रम्या की। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत है राजेश रोशन का।

साथियों, गर्मी अब अपने पूरे रंग में आ चुकी है, सूरज की तपिश बढ़ रही है, और ऐसे मौसम में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है पानी। जी हाँ, पानी का एक गिलास भी जब सूखे गले को राहत देता है तो उसकी असली कीमत समझ में आती है। गर्मी के दिनों में पानी की एक एक बूंद अनमोल लगती है, क्योंकि कई बार पानी समय पर न मिले तो बेचैनी बढ़ जाती है और शरीर भी थकान महसूस करने लगता है। इसलिए शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आप स्वस्थ एवं ऊर्जावान बने रहें और शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर पानी के साथ नींबू पानी, छाछ, मट्ठा या नारियल पानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। ये पेय पदार्थ न केवल शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि पानी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा करते हैं। पर साथियों, केवल पानी पीना ही नहीं, बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस पानी की हमें आज आसानी से उपलब्धता है वही कई लोगों के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। तो आइए इन बातों के बाद सुनते हैं फिल्म खामोशी द म्यूज़िकल का ये अगला गीत, अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन स्वाति के साथ। गर्मी के मौसम में जब हम रास्ते के उस घने पेड़ की छांव में खड़े होकर अपनी थकान मिटा रहे होते हैं ना,

तब अगर हम अपना सर उठाकर ऊपर देखें तो हमें एक और खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। तपती धूप से बेफिक्र उस पेड़ की डालियों पर न जाने कितने नन्हे परिंदों ने अपने छोटे छोटे आशियाने बनाए होते हैं। गिलहरियों की भाग दौड़ चल रही होती है और पक्षी अपनी सुरीली तान छेड़े होते हैं। तब दिल चुपके से कहता है कि ये पेड़ सिर्फ हमें धूप से नहीं बचाते, ये तो न जाने कितने मासूमों का पूरा संसार है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी भाग दौड़ वाली ये दुनिया है जहां हम कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सीधे साधे पेड़ हैं जो बिना किसी शिकायत के चुपचाप कट जाते हैं, मगर जाते जाते हमें भी ऑक्सीजन दे जाते हैं। किताबों में तो हमने बहुत पढ़ा है कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती तो वो होती है ना दोस्तों, जहां हाथ दोनों तरफ से बढ़ाया जाए। अगर कुदरत हमें बिना मांगे इतना कुछ दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब इस धरती पर बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू पड़ती है, बारिश की बूंदों से धरती की सौंधी सौंधी खुशबू हमारी नाक में पड़ती है और सारा मौसम सुहावना हो जाता है, तो मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में जब घुले तो अपने हाथों से आप सभी ये कर्तव्य है कि एक छोटा सा पौधा उस मिट्टी के सीने में ज़रूर रोपिएगा। विश्वास मानिए, जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा उस पर हरी पत्तियाँ आएंगी, और कल को जब कोई राहगीर उसकी छाँव में बैठेगा तो उस अनजान मुसाफिर के मन से जो दुआ निकलेगी वो सीधे आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। तो चलिए अपनी इस खूबसूरत धरती को एक बार फिर से हरियाली की चुनरी उड़ाते हैं। मन में एक अच्छा सा संकल्प लीजिए, होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाइए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुंजन।

0: अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का, आइए सुनते हैं रायपुर से प्रादेशिक समाचार।
1: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित विशेष रेस्क्यू टीम द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि बच्चों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष भर यह कार्य जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस

अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनियाभर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंदेनार साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। ये सभी लोग मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुपेला निवासी एक व्यक्ति ने अधिक मुनाफे का लालच देकर कई लोगों से रकम निवेश कराई और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के लिए कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशन से गुड़ियारी की तरफ अंडरब्रिज पर सड़क यातायात को बंद किया जाएगा। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित झिंगा बहाल क्षेत्र में मंगलवार को 2 तेज रफ्तार वाहनों के आमने सामने से हुई टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे वाहन के चालक को बचा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं आज के तापमान और मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस था। इस दौरान वर्षा 3.6 मिलीमीटर मापी गई। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12:00 एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा।

आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 1:10 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर को साइन आप सुन सकेंगे। इसमें आप सुनेंगे चर्चा विश्व साइकिल दिवस पर, पर्यावरण संरक्षण पर और होगी गोएट बात, जिसमें पत्रों और मेलों पर आधारित ये कार्यक्रम है। ईमेल की गूंज, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 1:40 पर। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे। शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। लोकगीत का कार्यक्रम गोधूली, इसका प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:20 पर। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम माधुरी का आप आनंद ले सकेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा प्रसारित होगा शाम 7:05 पर। और ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल 7:20 पर आप सुन सकेंगे, जिसमें लखपति दीदी योजना साइकिल, इस विषय पर आप चर्चा सुनेंगे। सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:00। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 9:15 पर। और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे मन भावन। तो ये तो थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आप सभी का कार्यक्रम नए तराने में। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नए फिल्मी गीत, और आइए बिना देर किए सुनते हैं ये पहला गीत फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से, जिसमें आवाज़ें हैं शफाकत अमानत अली और सुनिधि चौहान की। गीत लिखा है विशाल शेखर ने और संगीत है विशाल ददलानी का। तो आइए और आनंद लीजिए नए तराने कार्यक्रम के इस पहले गीत का।

रानी स्वाति के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत फिल्म किस्मत कनेक्शन से। आवाजें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की। गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत है प्रीतम का।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: टेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: टेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे संझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ए दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू है कि साहे।
0: हाँ
1: तो
0: नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर। इस वक्त हम हैं कार्यक्रम नए तराने में, जिसमें हम सुन रहे हैं नए फिल्मी गीत। तो नए फिल्मी गीतों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म ये जवानी है दीवानी का ये गीत, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने में अब सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा और संगीत से सजाया दोनों से है मिथुन ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म तुम मिले से। आवाज़ है केके की, गीत लिखा है कुमार और सईद कादरी ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। तो आइए सुनते हैं नए तराने का ये अगला गीत।

0: डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम नए तराने में अब सुनते हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये गीत। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, गीत लिखा है जयदीप साहनी ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। सुनते हैं ये अगला गीत बी प्राक की आवाज में। फिल्म का नाम है शेरशाह, गीत लिखा है जानी ने और संगीत बी प्राक का ही है।

नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने में आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीत, और आइए अब सुनते हैं फिल्म खामोशियां का ये गीत। आवाज़ है पलक मुच्छल की, गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत है जीत गांगुली का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म सनक से जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीत लिखा है रश्मि विराग ने और संगीतबद्ध किया है जीत गांगुली ने।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: आइए कार्यक्रम नए तराने का सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म एनिमल से, जिसमें आवाज है अरिजीत सिंह की और संगीत दिया है श्रेयस पुराणिक ने।

ग्यारह बजने वाले हैं और कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के

बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक

0: पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य, साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के निकेशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी खुशबू, लेकर आई हूँ आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

अभी आपने सुना हेट स्टोरी का यह प्यारा सा गीत। इस गीत की जिसकी फरमाइश की थी आप सभी श्रोताओं ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, श्री श्रृंगी शिहावा पर्वत अंचल ग्राम बिलखरखा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु एवं अंकित देवांगन, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, रजदीप राजेश, रासी राजेश, श्रीमती सीतल राजेश। अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहांडकर, श्रीमती सरिता गवहांडकर, प्रिंस एकांश गवहांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, सैलेस गवहांडकर, श्वेता सुमित गवहांडकर, कुमारी ध्वनि गवहांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत एवं प्रणीता गवहांडकर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा।

आपकी पसंद में अगली गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता बंधु हैं आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां, सरगुजा मेनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा

बेलदार, अकराम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर आधारित यह प्यारा सा गीत। आवाजें हैं शान एवं सुनिधि चौहान की, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म जन्नत का यह गीत, जिसमें शब्द रचना थी सैयद कादरी की एवं संगीत निर्देशन था प्रीतम का।
1: चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले
2: बाबू बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद में अब ये गीत सुनिए, जिसको फरमाइश करने वाले साथी हैं धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छुन्नूलाल यादव, अनुराग यादव, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद सादाब खत्री, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सिंह। तो लीजिए सुनिए फिल्म टशन का उदित नारायण एवं महालक्ष्मी अय्यर द्वारा गाया गया गीत। गीत के बोल लिखे हैं कौशर मुनीर ने एवं संगीत से लयबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में सुनिए सोनू निगम की आवाज में कल हो ना हो का यह गीत, जिसकी फरमाइश भेजी है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, सीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार।

अगले गीत की फरमाइशकर्ता श्रोता हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चांदनी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तानिया। तो पेश है आप सभी के फरमाइश पे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म राब्ता का यह प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह एवं अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म तमाशा से यह गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउर ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी।

0: राउर कर उपज हर नहीं बढ़ी नहीं।
1: हाँ
0: तहाँ
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ये सुन सकते है।
0: हाँ, अबे तो शुरू होएगी साहेब।
1: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाड़ी।
2: अभी सुने गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बलौता अकल तरह से दिलहरण गौतम अंजलि आनंद पटेल समृद्धि पटेल डाबर तालाब लोनी से रजा मोहम्मद रजा अहमद आरिस हुसैन ईशान हुसैन मरियम और कुशरा। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर यह प्यारी सी गीत जिसे अपने सुरों से सजाया है एस किंग एवं सासा तिरुपति ने।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज रायपुर और दुर्ग में छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने आज तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास और आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई की टीम ध्रुव के निवास पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की दो टीमें आज सुबह से जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है

कि गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ता बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत

0: मरुस्थल है गोबी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
1: जी
0: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोबी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
1: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी,
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोबी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके

0: जी
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊँट दो कूबड़ वाले होते हैं,
1: जी
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊँट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी,
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर।
5: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
5: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
4: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ओ, ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करें क्या करें, जल्दी सोचो क्या करें।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़

0: ओह, ऐसा करता हूँ पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
1: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
2: ओह, अब मैं क्या करूं? मैं
1: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
2: मैं ऐसा करता हूँ जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
1: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
2: ये रीछ तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
1: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
2: बच गए, लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
0: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
0: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
2: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त।

0: शित बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए,
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
3: नहीं करने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा, गौरमा,
6: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
5: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
6: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
5: गौरमा,
6: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
6: क्या?
5: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
6: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
6: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
8: बिल्कुल,
6: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ, हाँ
9: सब तैयार हैं।
7: किसी
9: भी हाल में जंगल कटने
8: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
10: ये है जंगल के उपकार,
11: मिट्टी पानी और बयान,
10: मिट्टी पानी और बयान।
2: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
12: अरे क्या कर रहे हो?
13: मेरा मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
12: अरे
8: भाई कौन है? रुको, इस चिपक जाएंगे पेड़ से।
6: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया,

0: तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया। उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
1: आगे बढ़ो।
2: अरे कहाँ से?
1: दो मिनट की बात तो मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
2: कहाँ पे? कानों से छिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे
0: हम। आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
3: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम छिपक जाएंगे।
1: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:23 होने वाले हैं, तो लीजिए सुनिए एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। लेकिन रुकिए, आज का शीर्षक क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। खूबसूरत समा, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत नज़ारे, शायद आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, तो आज का शीर्षक है खूबसूरत। हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें और हमारा चेहरा खूबसूरत लगे, लेकिन चेहरे की खूबसूरती सिर्फ रंग या शक्ल से नहीं होती। अगर किसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो, बात करने का तरीका अच्छा हो और वह हमेशा खुश हो, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और दिल झूमने लगता है। तो आप भी झूमने के लिए तैयार हो जाइए और सुनिए फिल्म गदर 2 का यह प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

चेहरे की खूबसूरती व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुंदर चेहरा लोगों को आकर्षित कर सकता है और पहली छाप को भी प्रभावशाली भी बना सकता है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक सच्ची मुस्कान, आत्मविश्वास और अच्छे विचार। इन सभी से चेहरे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो चलिए इसी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए सुनते हैं रोक फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

प्रकृति भी खूबसूरती का एक अद्भुत उदाहरण है। रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़, कलकलाती बहती हुई नदियाँ और पक्षियों का कलरव हमें सिखाते हैं कि सुंदरता हर जगह मौजूद है, हमें केवल उसे देखने के लिए सच्ची दृष्टि की आवश्यकता है।

सूर्य, चंद्रमा, पेड़ या किसी मित्र की मुस्कान भी हमें बुरे दिनों में भी सुकून देती है। सुंदरता का प्रभाव हमारे साथ हमेशा बना रहता है और जब हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ये हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: खूबसूरती देखने वालों के भावों पर निर्भर करता है। साथियों, किसी को किसी के नैन नक्श अच्छे लगते हैं तो किसी को किसी के लंबे बाल, किसी को हाइट एवं पर्सनालिटी अच्छी लगती है तो किसी को किसी का रंग रूप, ये तो देखने वालों के आंखों पर निर्भर होता है। तो साथियों, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन से सजा यह प्यारा सा गीत।

साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चयन यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे।

पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,000

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आप अभी दिल्ली के केंद्र से सुन रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण, जिसका विषय है नीम कोटेक यूरिया।
2: नीम कोटेक यूरिया सामान्य यूरिया का एक उन्नत रूप है, जिसके दानों पर नीम के तेल का लेप अर्थात कोटिंग की जाती है। भारत सरकार ने पारंपरिक यूरिया के दुरुपयोग को रोकने और खेती में नाइट्रोजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए देश में 100% नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अनिवार्य किया है। इसमें 46% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। सामान्य यूरिया पानी में बहुत तेजी से घुलता है, जबकि नीम कोटेड यूरिया मिट्टी में बहुत धीरे धीरे घुलता है। इसी प्रकार सामान्य यूरिया निश्चलन और गैस बनकर 50-60% तक बर्बाद होता है। नीम कोटेड यूरिया नाइट्रोजन का नुकसान 30-40% तक कम करता है। सामान्य यूरिया कीटों को आकर्षित कर सकता है, उसी प्रकार नीम के गुणों के कारण अवतरित होने के कारण प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। सामान्य यूरिया रासायनिक उद्योगों में अवैध रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि नीम कोटेड यूरिया कड़वाहट के कारण उद्योगों के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है। फसलों को लंबे समय तक नाइट्रोजन मिलने से यूरिया की खपत 5-10% तक घट जाती है। फसलों को जरूरत के अनुसार पोषण तत्व मिलने से पैदावार में 10-15% तक की बढ़ोतरी होती है। नीम में मौजूद तत्वों के कारण फसलों को हानिकारक कीटों और फंगस से बचाव होता है। नीम कोटेड यूरिया के कारण मिट्टी के नाइट्रीकरण को धीमा कर पर्यावरण और भूजल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। गैर कृषि कार्यों में इसका अवैध इस्तेमाल नहीं होने के कारण इसकी उपलब्धता आसानी से होती है। सब्जियों में नीम कोटेड यूरिया का सही इस्तेमाल पौधों के विकास और भारी पैदावार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जियों में यूरिया को एक साथ डालने के बजाय हमेशा 3-4 भागों में बांटकर देना चाहिए। पहला भाग बुआई या रोपाई के समय, खेत तैयार करते समय यूरिया की कुल मात्रा का 1/3 भाग फास्फोरस और पोटाश के साथ बेसक खुराक के रूप में मिट्टी में मिलाना चाहिए। दूसरा भाग रोपाई के 20-25 दिन बाद, जब पौधे अपनी वानस्पतिक वृद्धि शुरू करें तब नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए देना चाहिए। तीसरा भाग फूल आने के ठीक पहले, रोपाई के 40-45 दिन बाद, ताकि पौधों में अधिक शाखाएं और फूल आ सकें। चौथा भाग फल बनते समय ऐच्छिक है। लंबी अवधि की सब्जियां जैसे मिर्च बैगन में पहली तुड़ाई के बाद हल्की मात्रा में देना फायदेमंद होता है। कम अवधि वाली सब्जियों में जैसे भिंडी लौकी तोरई में 35-40 किलोग्राम प्रति एकड़ पूरी फसल अवधि में देना उचित है। इसी प्रकार लंबी अवधि वाली सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैगन में 50-60 किलोग्राम प्रति एकड़ पूरी फसल अवधि में देना उपयुक्त होता है। ड्रॉप ड्रेसिंग यूरिया को हमेशा पौधों की जड़ों से 2-3 इंच दूर गोल घेरा बनाकर डालना चाहिए। दानों को सीधे मुख्य तने या पत्तियों पर ना गिरने दें, अन्यथा पत्तियां जल सकती हैं। यूरिया डालते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यूरिया डालने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें। सब्जियों में ज्यादा यूरिया डालने से पौधे बहुत कोमल और रसीले हो जाते हैं, जिससे उनमें कीटों और फंगस का हमला तेजी से बढ़ता है। अतः अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। नीम के कारण यह दीमक और अन्य कीटों से फसल की रक्षा करता है। साथ ही साथ

0: से 10% तक कम यूरिया की आवश्यकता होती है, जिससे किसानों की लागत भी कम होती है। नाइट्रोजन के नुकसान को कम करके यह भूजल को प्रदूषण से भी बचाता है।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर को साईं।

हमर घर गोसाई सुने वाला जम्मो बहनी भैया सयान लइका छुआ जम्मो संगवारी मनला लाली बहन के डहर ले राम राम जय जोहार। औ भाई का काम बूता होता है बहनी हो? देखिए कि भाई हमन हमेशा सुनत रहती कि पर्यावरण का संरक्षण करना है हमन ला, भविष्य पर हमन ला लइका छुआ मन पर अच्छा वातावरण देना है। और आज हमने मन देखता है कि हमने के कारण कितना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, प्रकृति से हमन इतना ज़्यादा जो भी हमन ला निःशुल्क बिना पैसा कर जो भी चीज़ मिली से, चाहे वो हवा है चाहे पानी है चाहे पेड़ पौधा है, ओला हमन अपन आवश्यकता पर इतना ज़्यादा उपयोग पर हमन ओला नुकसान पहुँचाए दे ही कि हमन ला खुद ही ओकर नुकसान ला भुगतना पड़त है। और अगर हमन अभी भी सचेत नहीं हो तो आए वाला समय में बहुत ही बुरा परिस्थिति हो ही। तो पर्यावरण पर हमेशा जागरूक रही, अपन लइका मन ला अपन आस पास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाई, पर्यावरण ला बचाई। और देखिए आज 3 जून के खास जो दिन है पर्यावरण से ही जुड़ल है हमार विश्व साइकिल दिवस। और देखिए सबसे पहले 12 अप्रैल 2018 के कर प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्तावित हुई और 3 जून से पूरा विश्व भर में साइकिल दिवस के रूप में मनाए बर घोषित हुई से, और तब से हमन मनाता ही। और देखिए ये पर्यावरण का संरक्षण भी कर ले, काहे कि देखिए किफ़ायती भी है, हमार कोई खर्चा कम लगता है तो ओकर से हमन कर ऊर्जा कर भी बचत होता है। गाड़ी में इते उते हमन जाती तो भाई तेल होल ईंधन होल ओकर भाई कहीं पर ज़्यादा काम भी नहीं है, तबो हमन थोड़ा सा दूर यहाँ भी जाता ही तो झट ले हमन गाड़ी ला लेके जाती। और अगर साइकिल में कर उपयोग करती तो हमन कर स्वास्थ्य भी बढ़िया रहते और हमार खर्च भी कम है और ऊर्जा कर संरक्षण भी हवे, हमर पर्यावरण का संरक्षण हवे, हमर स्वास्थ्य पर भी बढ़िया हवे। तो खास ए दिन ला हमन यही बर मनाती पूरा विश्व में कि ओमे जागरूकता है, विश्व साइकिल दिवस के बारे में सब कोई जागरूक होए और साइकिल का उपयोग करें। अब तो बहुत जरूरी है कि हमन साइकिल कर, जैसे हमार पहले पुरखा मन साइकिल का उपयोग ज़्यादा करत रहें, वैसे हमन ला भी चाहिए कि हमन ओकर उपयोग करी, अपन ऊर्जा ला बचाई, पर्यावरण ला बचाई और हमार स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। जैसे हमन कथी ना कि पहला धन हमार निरोगी काया है, तो अगर हमार साइकिल चलाती तो हमार स्वास्थ्य कर भी रक्षा होते। देखिए गुड बात तो आज बहुत करब, हमर जो आज राउर मन के खास कार्यक्रम हवे ईमेल और पत्र शामिल करे के, जेमे कि ढेरे अकन गीत संगीत ला भी सुनाब, लेकिन ओकर से पहले कुछ संदेश है एक ठो ला सुन ले चली।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ तो संदेश ला सुनें, और जैसे कि कहन कि राउर मन के फरमाइशी कार्यक्रम हमर गोट बात कार्यक्रम और ईमेल शामिल करे के कार्यक्रम है, तो वही में मैं पहला जो ईमेल लेता हूँ आई से ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर सरगुजा से भेजवाइया हमें जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह,

सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। और एक ठन ममता चंद्राकर कर गाल छत्तीसगढ़ी गीत कर फरमाइश करीन है, तो चली इनकर पसंद कर गीत ला सुनी।

हो तो सुघर कन छत्तीसगढ़ी लोकगीत लासुन ममता चंद्राकर कर गाल रहीस। दूसर जो मेला शामिल करता हूँ आइस है सारसताल सुनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से भेजवाइया है प्रेसक सुपर स्टार्स रेडियो श्रोता संघ प्रेम साय राजवाड़े सुमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार राम खेलावन सिंह पैकरा लिखिन है घर गोसाइन प्रस्तुतकर्ता मनला हमर डहरले राम राम जय जोहार हमर डहरले भी राम राम हमरे मन सबो कार्यक्रम ला सुनथन ध्यान से सुनथन एक जून कर घर गोसाइन बहुत अच्छा लागिस लाली दीदी ला बधाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबो जनला और सबो सुनवैया मनला 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के भी हार्दिक शुभकामना बधाई सबो जन पेड़ पौधा लगाई देखी कितना सुघर विचार लिखिन है और सही बात है सबो जनला हमर पर्यावरण का रक्षा करे बर एक एक ठन अगर हमन पेड़ भी लगाब तो हमर पर्यावरण कर जरूर सुरक्षा होही। तो चलिए एक ठन गीतला सुनी भोजपुरी लोकगीत है मोहम्मद खलील और संगता मनकर गाल।

हाँ तो सुघर अकन भोजपुरी गीत लहसुन एन मोहम्मद खलील और संगता मनकर गाल रहीस। अब जो अगला मेला आई से रिंगनी छत्तीसगढ़ से भेजवैया हैं करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दिनेश वर्मा और लिखिन हैं हमन सब कार्यक्रम ला ध्यान से सुन दी जम्मो दीदी मनला धन्यवाद। और एक ठन कोई सा भी गीत सुनाए कर फरमाइश करी है तो चलिए एक ठन छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुनी गुलाब सिंह पैकरा और संगता मनकर गाल।

हाँ तो सुघर एकन छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुनिन गुलाब सिंह पैकरा और संगता मनकर गाल रहीस। अब एक ठन पत्र आई से हमन कर ओला पहले पढ़ देत हों, ये गीत बर फरमाइश करीन है। आई से हमर कोट्या दरिमा सरगुजा से और भेजवैया हमें कुलभूषण सिंह, साधना सिंह, रानू सिंह, रानी सिंह और छोटी और परिवार के जम्मो सदस्य मन लिखिन है कि भाई हमन हमेशा घर गोसाइन कार्यक्रम और आकाशवाणी अंबिकापुर के जम्मो कार्यक्रम ला हमन ध्यान से सुनती, हमन ला बहुत बढ़िया लागते और बहुत ही प्रेरणादायक रहते और बहनी मन ला बहुत अच्छा अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत होए बर जो कर जो कि आज कर पहला जरूरत है ओकर बर राउर मन बनात बता था भेंटवार्ता बहनी कर कहनी जम्मो चीज हमन ला अच्छा लगते। और सभी दीदी मन ला बहुत बहुत शुभकामना बधाई लिखिन है। राम राम जय जवाहर, हमर कति से भी राम राम जय जवाहर। और एक ठन सरगुजिया लोकगीत सुनाए कर फरमाइश करीन है, तो चली सुनी ज्ञान दास कर गाल।

हाँ तो सुघर एकन सरगुजिया गीत ला सुनेन ज्ञान दास कर गाल रहीस। बहनी हो, हमन तो हमेशा बात करते रहती कि हमन ला जागरूक होना है और मन बर खास हमर कार्यक्रम बहनी कर कहनी यही बर रहेल हमेशा कि राउर मन ओकर से लाभ लेके और आगू बढ़ी और कुछ न कुछ अपन करके और पैसा कमाई आर्थिक रूप से मजबूत हुई। और देखी अभी तो बहनी मन कथें कि भाई हमन का करी और बहुत बहनी मन हमन से अभी ऐसे अभी भी कथें कि राउर मन बताई कि हमन ऐसा का काम करी। देखी घर में भी बैठे बहुत सारा काम हमन हमेशा बताती कि अपन रुचि के अनुसार कर सकता ही। और अभी तो देखिए आमा कर बेरा है हमर से आनिन दाई मन हमन लामो के देख के इतना गर्व हो कि इतना बढ़िया लगे कि मैं का कहूँ। हमर से आनिन दाई मन बड़खा बड़खा पथिया ला ले के और आमा ला गाँव से बीन के भाई आमा तो मिल जाते हैं आजकल आसानी से हर जगह पेड़ रहते हमर गांव गोई में तो बढ़िया बीन के लाना था हैं पथिया पथिया यहाँ मस्त शहर में आके और बेचत हैं और बढ़िया से पैसा भी दो पैसा हो जाते और देखिए अपन समय कर भी सदुपयोग हो जाए। इते उते बैठ के खाली का फायदा है ओकर से अच्छा है कि हमन कुछ काम ला करके और आगू बढ़ी। बहनी मन आमा के समय है तो आमा कर अचार भी बनाए बर और देखिए हमर सब बहनी मन इतना गुणी है इतना गुण है मन के हाथ में कि इतना बढ़िया बढ़िया और लाजवाब अचार बनाते हैं। और बहुत बहनी मन महिला समूह से भी जुड़ के अचार कर भी गिरी उद्योग ला कर रहता है और आमा है तो आमा कर अचार बना के डिब्बा बंद करके भी राउर मन महिला समूह से भी 10-12 बहनी मन जुड़ के भी एक आमला शुरू कर सका था और बहुत बढ़िया लाभ कमा सका था। तो यही है कि हमन अगर सोचब तो हमन से कोई भी मंजिल दूर नहीं है और हमन अपन बर भी कर सकता ही अपन परिवार ला भी मजबूत कर सकता ही। अब देखिए हमन हमेशा कुछ न कुछ काम अच्छा काम ला करब तो हमर लड़का मन भी वही बात ला सीखी हमरे मन ला देख के लड़का मन वैसे ही हो ही कहे कि आज हमन जो ही हमर दाई दाऊ दादा दादी जो भी हमर सियान मन रहिन या हमर माँ पापा मन रहिन वही मन ला देख के आज हमन जो भी ही उमन कर जरूर प्रभाव पड़े तो अपन लड़का मन ला जरूर अच्छा गोठला सिखाई अच्छा आदत ला सिखाई और आगू बढ़ी स्वयं भी और लड़का मन ला भी आगू बढ़ाई। और देखिए अब तो थोड़कुन बेरा हर ही बातचीत है तो जात जात मैं यही कहना चाहूँ कि राउर मन जितना जन भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े ही आज ईमेल कर माध्यम से पत्र के माध्यम से जम्मू मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारे जुड़े कर कड़ी है हमन से यही कस जुड़े रही तो जात जात पता बताए देता हूँ। हमारे ईमेल भेजे पर हमारा आईडी है ghargosain@gmail.com और अगर पत्र लिखना चाहा था चिट्ठी लिखना चाहा था तो हमारे पता हवे आकाशवाणी अम्बिका कापुर कार्यक्रम घर गोसाइन पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन है 497001 अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो ऐसे ही हमर कार्यक्रम से जुड़े रही धन्यवाद लाली बहिन ला दे विदा फिर भेटा हूँ राम राम जय जोहार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

स्वागत है श्रोताओं आपका आपके फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। हमें पहले गीत के लिए फरमाइश मिली है विदर्भ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले एवं डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है अनारकली बाजार जगराओं से, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार और नशीम बेगम, अकोला से सुयस रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कृति कुमार, डीकेस साहू, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख उल्लाह बख्श बेगम, रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, सोनी मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका, सुभचंद्र बाजार से साहिल बजाज, पिट्टा बजाज, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी कुमकुम, ग्राम सोंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार से सभी सदस्य, अंडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश।

दीपेश वर्मा। मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, अर्जुन गवहानकर एवं टुक टुक। तो चलिए श्रोता, आपकी पसंद से सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाओगा का यह प्यारा सा गीत, जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण की।

टीएस, नवहावकर, निर्मला, विशाल, सोपान, तायडे, नारायण, इंगले, नलेश्वर नगर, नलेश्वर महाराष्ट्र से, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, सोनल, बेबी सिया एवं बेबी जाधव, जालाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमाए, सोमार, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से मानसी, अनिल, गौरव, कविता और सभी अरोरा फैमिली, आप सभी ने सुनना चाहा है हम साथ साथ है का यह गीत, जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार शानू एवं साथी की। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर यह हम साथ साथ है क्या प्यारा सा गीत।

नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबरा, इंद्रजीत कौर छाबरा, गिरेटे झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान शायमा नवाज, हसन नवाज, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, सुकून, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, सरधना मेरठ से अनिल जैन एवं मलियान, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास, रानी मानिकपुरी, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नजिया नासिर साजिद साहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, ग्राम धरदेई सरगावा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और क्रिस्टी पटवा। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए ये सुनिए गाना फिल्म हम आपके हैं कौन से। इस गीत को अपने सुर सजाया है लता मंगेशकर एवं एसपी बाला सुब्रमण्यम एवं साथी।

बाजार रोड, आप सुन रहे हैं ईमेल की गूंज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फरमाइशी श्रोताओं की ओर, जिसमें हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, मंसूरी कमरून, निशा साबिस्ता मोहम्मद, नशीब पलक, लुबना और यस मंसूरी। बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहित्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी सहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आसिस रजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन। इनका पता है पलारी छत्तीसगढ़। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन, रंजीत कुशवाहा और रामानंद कुशवाहा और सभी साथी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। जशपुर उत्तराखंड से रियाशत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ का यह प्यारा सा गीत। आवाज़ें हैं चित्रा एवं शान की।

इसी गीत की फरमाइश भेजी थी ग्राम पीपरलोड सरगवा मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आशना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पंढरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन कुसुम, कलावती जूली और जगदीश जौहरी, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, ये इन्होंने भेजा था धुर्रा बांध भाटापारा से, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार,

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड। इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज से मुझे यानी अपनी रेडियो साथी खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में

जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोय ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के

मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित कार्यक्रम गीत गंधा।

सभा के आरंभ में 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पांच बजकर 5 मिनट पर कार्यक्रम भजन संध्या के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। छह बजकर 5 मिनट पर विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा। छह बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम गोधूली। शाम 6:30 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम माधुरी।

7:05 पर सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। ₹7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

10 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित संगीत एवं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर

0: उर नवापारा इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडीह, कोनपारा, संतपारा, फुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये सामरसिंघा, सोहनपुर, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, गलीमार, लोटान, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है शांतिकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में ये सुनते हैं सुरेश वाडकर का गाया ये गणपति वंदना, जिसे लिखा है चंद्रशेखर पांडे ने।

सुरेश वाडकर की आवाज में आपने ये गणपति वंदना सुनी। आइए अब सुनते हैं बिंदु जी की लिखी ये पारंपरिक भक्ति रचना। स्वर है सुमन कल्याणपुर का।

जगजीत सिंह की आवाज में आपने ये कृष्ण वंदना सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं भरत आचार्य का लिखा ये शिव भजन। आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

अनुराधा पौडवाल के गए भरत आचार्य के लिखे श्रेय भजन के साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए पेश है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रागिनी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। ट्रेंड एक ऐसा शब्द जो आजकल हमारी ज़िंदगी में शायद उतना ही मौजूद है जितनी चाय में चीनी। कोई गाना ट्रेंड में है, कोई डांस ट्रेंड में है, कोई फैशन ट्रेंड में है और कभी कभी तो लोगों की राय भी ट्रेंड में चलने लगती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कल सुबह सोशल मीडिया से सारे ट्रेंड गायब हो जाएं, तो क्या हम जान पाएंगे कि हमें सच में क्या पसंद है?

दोस्तों, एक समय था जब लोग आईने में खुद को देखते थे। आजकल लोग स्क्रीन में दूसरों को देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कौन सा गाना पसंद करना है, किस बात पर हंसना है, यहाँ तक कि कभी कभी किस बात पर दुखी होना है, सब कुछ ट्रेंड तय करने लगते हैं। दोस्तों, अब ट्रेंड्स बुरे नहीं हैं। अगर कोई किताब ट्रेंड कर रही है, कोई सामाजिक अभियान लोगों को जोड़ रहा है, कोई नई तकनीक युवाओं के लिए अवसर लेकर आ रही है, तो ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बनना अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी है? क्योंकि ट्रेंड्स की दुनिया का सबसे बड़ा डर है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हुआ तो। और यहीं से शुरू होती है भीड़, एक ऐसी भीड़ जो दौड़ तो रही है लेकिन शायद उसे खुद नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। दोस्तों, कभी नदी को देखा है? वह अपना रास्ता खुद बनाती है। और कभी सूखे पत्तों को देखा है? हवा जिधर ले जाए उधर चले जाते हैं। अब तय हमें करना है कि आप नदी बनना चाहते हैं या सूखे पत्ते। क्योंकि हर ट्रेंड के पीछे भागना आसान है, लेकिन अपनी पसंद, अपनी सोच और अपनी पहचान को बचा कर रखना वह थोड़ा मुश्किल है। और शायद इसी वजह से वह ज़्यादा कीमती भी है। आज दुनिया में सबसे अलग दिखने वाला इंसान वो नहीं जो हर ट्रेंड जानता है, बल्कि वो है जो खुद को जानता है, जो ये जानता है कि मुझे हर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, कुछ रास्तों पर अकेले भी चलना है। तो दोस्तों, ट्रेंड्स को देखिए, समझिए, इंजॉय भी कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि ट्रेंड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, आपकी पहचान नहीं। ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी पहचान और सोच ही हमें अलग बनाती है। हर ट्रेंड को अपनाना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि हम वही चुने जो हमारे व्यक्तित्व और मूल्यों के साथ मेल खाता हो। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस भीड़ के पीछे चलने में नहीं, बल्कि अपनी राह खुद चुनने में है। दोस्तों, ट्रेंड आज है, कल शायद ना हो, लेकिन आपकी असली पहचान हमेशा आपके साथ रहेगी। इसीलिए ट्रेंड को फॉलो कीजिए या नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है, वह खुद को कभी मत खोइए। तो दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं अजय गोगावले की आवाज़ में फिल्म धड़क से ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद चलते हैं हमारे अगले क्रम इनसे मिलिए में, जिसमें आप सुनेंगे लेखिका महिमा श्रीवास्तव से बातचीत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्रम इनसे मिलिए में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रम इनसे मिलिए में हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ किया है और नाम कमाया है। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं महिमा श्रीवास्तव जी, तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं उन्हीं से उनका पूरा परिचय।
1: जी, मेरा नाम महिमा श्रीवास्तव है और मैं लिखने के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखती हूँ और मेरी जो पढ़ाई है या शिक्षा आप कह लीजिए, वो BSc बायोटेक्नोलॉजी यहीं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हुई है, साइंस कॉलेज से। और आज मैं आपके पास अगर बैठी हूँ तो अपने कविता को लेके ही।
0: जी, तो बहुत बहुत स्वागत है महिमा जी आपका हमारे इस क्रम में। तो आप एक कवि हैं, आप अपने शब्दों को पिरोकर अपनी भावनाओं को कविता और कहानियों में व्यक्त करती हैं जी। तो इसके अलावा आप और क्या करती हैं?
1: धन्यवाद रागिनी जी, आपने मुझे इतने अच्छे से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। मैं कविता लिखने के साथ साथ एक वेटनेरियन भी हूँ और मैंने रिसर्च के फील्ड में भी अभी अभी कदम रखा है कि मैं MSc कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से ही, यही अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से ही। इसके अलावा मैंने ये सोचा कि जो शिक्षा मुझे मिली है वो मैं और बच्चों में भी बांट पाऊँ और विद्यार्थियों में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब सक्षम हो शिक्षा लेने में। इसलिए मैं निम्न कोचिंग संस्थान के साथ उनको नीट की कोचिंग भी देने में रुचि रखती हूँ और निरंतर उस पर काम कर रही हूँ।
0: जी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप कि जो बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आप उसमें उनको योगदान देकर उनको शिक्षित कर रही हैं। तो आपने पहली कविता किस उम्र में लिखी थी?
1: जी, मुझे याद आता है कि जब मैं पहली कविता लिख रही थी, जब मैं कक्षा 11वीं में थी
0: जी,
1: और मैंने अपनी पहली कविता असफलता के ऊपर लिखी, क्योंकि जीवन में मैंने सिर्फ शिखर देखा था और मैं पहली बार कहीं मुंह के बल गिरना जो कहते हैं वो पहली बार मैंने महसूस किया। तो मैंने पहली बार असफलता पे लिखी थी और ये दृढ़ संकल्प करके लिखा था कि आगे

0: कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिर्फ सफल ही हूं,
1: जी
0: ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आगे कभी असफलता ना देखूं।
1: जी
0: जी
1: ये बहुत अच्छा हुआ आपके साथ कि आप अपने जीवन में एक बार असफल हुई, जिससे आपको पता चला कि आप कविताएं लिख सकती हैं। एक
0: जी
1: तरीके से कहें तो आपने आपदा को अवसर में बदला।
0: जी
1: तो आपके पास आपको अपनी वो कविता याद है जो आपने उस समय असफलता पर लिखी थी?
0: बिल्कुल याद है। मैं आपको उसकी चंद लाइनें बोल के बताती हूँ
1: जी बिल्कुल।
0: कि पराजित हो जाना परिश्रमी नहीं है, पराजित हो जाना परिश्रमी नहीं है, तुम्हारे हौसलों में कमी नहीं है, मन से चोटिल होने वाले अभी तुम्हारा कहीं नहीं है, जिनके व्यंग बातों से उठती है आह तेरी, उनके पास स्वयं 2 गज जमीन नहीं है, कर गुजर जाने का एक जज्बा ख्याल कर, तेरे भूख बस वही नहीं है, तुझे बढ़ना है आगे बस पथ पर चलते जा, जिंदगी जिंदा दिली है अभी थमी नहीं है। जी
1: जी बहुत खूबसूरत लाइन है, और उम्मीद करते हैं कि जो अपने जीवन में कभी असफल हुए होंगे
0: जी
1: वो आपकी इस कहानी से प्रेरणा लेंगे कि कैसे आपने असफल होने पर एक कविता लिख डाली।
0: जी
1: तो आपके पसंदीदा कवि कौन है? मतलब एक होता है कि हम किसी को देखकर सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो आप किन से प्रेरणा लेती हैं?
0: जी मेरे पसंदीदा कवि की अगर बात करें तो वैसे तो मैं बहुत सारों को सुनती हूँ। अब यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इजीली वो चीज़ मुझको प्रोवाइड हो जाती है।
1: जी
0: लेकिन मेरे पसंदीदा कवि थे हरिवंश राय बच्चन जी,
1: जी
0: जिनकी कुछ पंक्तियाँ, एक रचना है जो बीत गई सो बात गई। उनकी पहली पंक्ति, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो बीत गया तो बीत गया, पर अंबर के आनंद को देखो। उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और मुझे वो अपनी कविता अपने जीवन पे लिखी हुई लगती है, तो मैं उससे काफ़ी प्रेरित हूँ।
1: जी तो एक कवि के नज़रिए से
0: जी
1: जो हमारा समाज है, लोगों को जो देखने का एक तरीका होता है,
0: जी
1: उनको आप बहुत अलग तरीके से देखते हैं,
0: जी
1: जिनको देखकर आप कविताएं लिख देते हैं, शब्दों का चुनाव करते हैं,
0: जी
1: तो आप समाज को किस नज़रिए से देखती हैं?
0: मैं समाज को ऐसे देखती हूँ कि अगर कुरीतियाँ हैं
1: जी
0: तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं।
1: जी जी
0: अगर कहीं ऐसा है कि शिक्षा नहीं पहुँच रहा है, तो आज कविता के माध्यम से या कोई भी संचार माध्यम से वो दूर दूर तक पहुँच रही है। तो एक शायद हर सिक्के के दो पहलू होते हैं,
1: जी
0: तो एक अच्छा है तो एक बुरा भी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा देखूं और समाज को अच्छे की तरफ ही प्रोत्साहित करूं,
1: जी जी
0: क्योंकि अगर मैं ही बुरा देखूंगी, जिसके पास ये कला है कि वो लिख सकता है, अपनी बातों को दूर तक पहुंचा सकता है, और वही अगर बुरी चीज़ें पहुंचाएगा, अच्छी चीज़ें नहीं पहुंचा पाएगा, तो फिर तो ये सही नहीं है ना।
1: जी
0: तो इसीलिए मेरे तरफ से अच्छी चीज़ें ही मैं देखूं, और आगे भी बच्चों को भी वही प्रेरणा देती हूँ, मैं पढ़ाते समय खुद भी वही प्रेरणा लेती हूँ, और कभी-कभी अपने से बड़ों को भी समझाना पड़ता है। जी
1: तो जैसा आपने बताया कि आप लोगों को देखकर प्रेरित होती हैं,
0: जी
1: कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जी ऐसे सच कहूँ तो मेरे को कविता लिखने की प्रेरणा मेरी मदर से मिली, मेरी
1: जी
0: मम्मी से मिली। वो स्वयं भी लिखती हैं। उसके बाद मैं जब जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो बहुत सारे कवि मुझको मिलते गए और मैं उनको पढ़ती गई, और उनकी चीज़ें, जो लाइनें, जो पंक्तियाँ वो लिखते हैं, वो मुझे स्वयं के जीवन से जुड़ाव महसूस होता गया। तो मुझे प्रेरणा तो मम्मी से मिली थी, पर मैंने उसको आगे कंटिन्यू रखा।
1: जी बातों का सिलसिला चलता रहेगा,
0: जी
1: पर अब समय हो गया है एक गीत का, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: मैं सुनना चाहूंगी फिर से उड़ चला, जो रॉकस्टार मूवी का है,
1: जी
0: जिससे
1: जी
0: मुझे काफी प्रेरणा मिलती है, और वो बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है।
1: तो आइए श्रोताओं सुनते हैं महिमा जी की पसंद का ये गीत।

0: तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्रम इनसे मिलिए में, जहां आज हमारे साथ हैं एक कवियत्री जिनका नाम है महिमा श्रीवास्तव। तो हमने जाना कि महिमा को कविता लिखने की प्रेरणा कहां से मिली और उन्होंने अपना पहला कविता असफलता पर कब लिखा था। तो महिमा जी, आपकी पसंदीदा कविता कौन सी है? एक होता है कि हम अपने क्रिएशंस में से किसी एक को अपना फेवरेट समझते हैं, तो आपका जो फेवरेट कविता या कहानी है वो कौन सा है?
1: जी, मेरी पहली कविता जो मैंने स्वयं के लिए लिखी थी, क्योंकि जब मैं पहली बार वेटनरी कॉलेज जगदलपुर गई थी
0: जी,
1: तो मुझे अपनी बात कहने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस होती थी और मैं ऐसे रहती थी कि लोगों से डर के रहती थी, कट के रहती थी। कॉन्फिडेंस था पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं शायद बात कहने में असक्षम हूँ। तो मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देते समय एक कविता लिखी थी, मैं बेबाकी से अपनी बात रखने वाली लड़की हूँ। तो मैंने वो लिखी और वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है।
0: तो वो आप हमारे साथियों को सुना देती हैं तो बहुत अच्छा लगता।
1: जी बिल्कुल, थोड़ी सी लंबी है, है ना। मैं बेबाकी से अपनी बात रखने वाली लड़की हूँ, हाँ मैं पुराने ख्यालात वाली लड़की हूँ। मैं बेबाकी से अपनी बात रखने वाली लड़की हूँ, हाँ मैं पुराने ख्यालात वाली लड़की हूँ। पहनावा और कपड़े मुझको परिभाषित थोड़ी ना करते हैं, महज मैं अंदाजे सवालात वाली लड़की हूँ। ये गहने, ये लहजे, ये बात बात पर रो देना, मुस्कुराना, चिल्लाना, फिर शोर मचा देना। बेखौफ हूँ मैं अपने ही छिपे कमज़ोरी से, मैं भरी पूरी जज्बात वाली लड़की हूँ। लोगों के चेहरे से मन खटकता है मेरा, कुलजुम से मन में मैं शान सैलाब वाली लड़की हूँ। इस शहर, ये शहर बहुत ज़्यादा अलग है मुझसे, मैं इस शहर में सबसे अनजान वाली लड़की हूँ। करीब दरख्त के साए में मजाक जैसे बन बैठी थी, सब कहते हैं मैं काफ़ी सियासत वाली लड़की हूँ। चुपचाप बैठ जाना भी अदाकारी है नाराज़गी की, मैं थोड़ी थोड़ी सियासत वाली लड़की हूँ। हाँ मैं पुराने ख्यालात वाली लड़की हूँ, मैं बेबाकी से अपनी बात रखने वाली लड़की हूँ। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी लाइन्स लिखी हैं आपने कि एक लड़की किस तरीके से अपने बारे में व्यक्त करती है कि वो किस तरीके की लड़की है। तो महिमा जी, आपने अभी जो कविता सुनाई वो बहुत अच्छी थी, तो हम जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, वो कविता के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? मतलब आज के जो युवा हैं वो कविताओं से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं?
1: जी, मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आज के दौर में काफ़ी मंच बनाए गए हैं
0: जी,
1: और उनको पहली बात तो इस कॉन्फिडेंस में आना चाहिए कि हम अपनी बात सामने समक्ष रूप से रख सकें, क्योंकि आज बहुत

0: ज़्यादा ज़रूरी कि आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रखें, बताएं आप क्या सोचते हैं, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप अपनी बातें अपने तक ही रखेंगे, आप अपनी बातें दूसरों को बताइए, इससे आपका भी मनोबल बढ़ता है और सामने वाले को भी आपसे कुछ प्रोत्साहन मिलता है।
1: जी
0: तो उनके लिए बहुत मंच बनाए गए हैं, सोशल मीडिया का भी दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि जिसके पास फ़ोन नहीं हो।
1: जी जी
0: तो फ़ोन है, आप बिल्कुल रिकॉर्ड करके खुद भी डाल सकते हैं निम्नलिखित प्लेटफॉर्म में, और माइक में स्टेज में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, इससे आप लिखने की ओर भी प्रेरित होंगे, सिर्फ फ़ोन चलाना ही तो सही नहीं है अब। जी
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बहुत अच्छा कहा कि जो आज के युवाओं को बहुत सारे
0: जी
1: मंच दिए गए हैं जिसमें वो अपनी प्रतिभाओं को खुलकर बता सकते हैं लोगों को। तो
0: जी
1: आपको सोशल मीडिया ने किस तरीके से हेल्प करा है अपनी कविताओं को प्रमोट करने के लिए जिससे
0: जी
1: लोग आपसे जुड़ सकें?
0: जी मुझे सोशल मीडिया, पहले तो मैं आपको अभी मैंने बताया कि मैं हर जगह ही मेरा कॉन्फिडेंस कम था।
1: जी
0: उसके बाद जब सोशल मीडिया मेरे लाइफ में आया, तो कोरोना के वक्त पे, जब
1: जी
0: कोविड था और मैं घर से बाहर थी, मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रह के पढ़ रही थी, तब मेरे कोचिंग का टाइम चल रहा था खुद के, और मैं घर से भी दूर थी, पढ़ाई अकेले करके रहना और घर वालों से दूर रहना,
1: जी
0: और पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कुछ देखना मेरे लिए काफ़ी नया था, घर से दूर रह के। तो खुद को भी प्रेरणा देना पड़ता है, खुद ही अपनी चीज़ों को संभालना पड़ता है, तब मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो मैं उस टाइम इंस्टाग्राम पे आई
1: जी
0: और अपनी पोयम बोलने लगी, थोड़ा लिखने लगी, लोग प्रोत्साहित करने लगे, तो मुझे लगा नहीं कि बोलना भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है, और मुझे उसके लिए बहुत सारे नए अच्छे कमेंट्स मिले, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए। तो सोशल मीडिया ही मुझे आज यहाँ तक लेके आया कि मैं आपके सामने बैठ के और ऐसे बात कर सकती हूँ।
1: जी
0: जी
1: तो जब सोशल मीडिया पर आपने अपने पोस्ट डाले, अपनी कविताओं को लिखा, और आपसे जो लिसनर्स हैं या जो पाठक हैं जो आपकी कविताओं को सुनते और पढ़ते हैं, तो जब उनसे अप्रिसिएशन आपको मिला, उन्होंने आपको प्रोत्साहित करा, तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको?
0: जी तब तो बहुत अच्छा महसूस होता है, और ये कहते हैं कि जो कलाकार है
1: जी
0: तो उसके लिए ताली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी जी
0: अब वो अच्छे वे में है बुरे ये तो नहीं पता, लेकिन तालियां बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब लिखा, उसको बोला, सबके सामने रखा, तो एक तो मैंने अपने मन की बात रखी,
1: जी
0: और दूसरा उसके लिए अप्रिशिएशन मिलना कि आपको ताली बजा के मिल रहा है, आपको माला पहनाया जा रहा है, आपको गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं।
1: जी
0: और अब जब मैं पहली बार बोलना मैंने शुरू किया था मंच पर, कवि संगोष्ठी में, तब मैंने ये देखा था कि जितने भी और भी बोलने वाले लोग थे, वो सारे मेरे से 2 गुने एज के थे,
1: जी
0: तो मैं उनमें से सबसे छोटी थी। तो एक तो ये महसूस हो रहा था कि मैंने इतने छोटे से एज में कुछ तो किया है,
1: जी जी
0: तो मैं अपने लिए काफ़ी खुश थी, मेरे मेरे फैमिली भी बहुत खुश थे, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे अप्रिशिएशन तो मिल रहा है, मुझे आगे ये काम करना चाहिए।
1: जी जी
0: जी
1: तो आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जो नए स्ट्रगलर्स होते हैं
0: जी
1: जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जिनके अंदर इस तरीके की प्रतिभा होती है और वो
0: जी
1: सामने लोगों के व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो
0: जी
1: आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें आगे?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि निरंतर आगे बढ़ते रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये आपके जीवन में भी बहुत अच्छा आपको करने के लिए प्रेरित करेगा,
1: जी
0: और आपके जितने अनुभव होंगे वही पन्ने पे उतर के आएंगे, और एक दिन आप बोलने के लिए खुद इतना प्रोत्साहित हो जाएंगे कि अपनी बातें कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, सामने वाला या आपसे, आपके छोटे भाई बहन भी उस चीज़ से जूझ सकते हैं, तो आपको बाहर आना है, उन लोगों को प्रेरित करना है, और कैसे भी करके अपनी बात रखनी ही है। आज झिझक महसूस हो रही है, पहली बार में सबको झिझक महसूस होती है, पहली बार कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होती। हम स्कूल भी गए थे तो सबसे पहले दिन हमको ABCD नहीं आता था,
1: जी जी
0: लेकिन आज ऐसा, जब हम कॉलेज में जाते हैं, 12th पास करते तो हमारे पास डिग्रियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करना है और करना चाहिए।
1: जी बहुत अच्छी बातें बताई और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महिमा, आप हमारे इस क्रम में आई और हमसे बातचीत।
0: जी धन्यवाद रागिनी जी।
1: दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये क्रम इनसे मिलिए बस यहीं तक।

दोस्तों, अभी आपने सुना क्रम इनसे मिलिए में लेखिका महिमा श्रीवास्तव से बातचीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बेनी दयाल और शिफाली अलवारिस की आवाज में फिल्म ये जवानी है दीवानी से ये गीत।

इसी गीत के साथ दोस्तों समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बताते हैं कल की वाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पे और फरमाइशी क्रम महफिल। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रागिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार

0: लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपये से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आप सुनिए शांति विषय पर आज का विचार बिंदु। संकलन और वाचन स्वर है पद्मनाभ शर्मा का। शांति प्राप्त करने के लिए पहली और मुख्य बात यह है कि हम इसे पूर्ण रूप से जान जाएं कि इस भौतिक जगत में हमारा कौन सा स्थान है और सृष्टि से हमारा क्या संबंध है। इसके प्रत्यक्ष होने पर एक ही विचार हमारे सम्मुख रह जाता है कि हम इस ब्रह्मांड के ही नहीं बल्कि उसके संचालन करने वाली शक्ति के एक अंश हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का एक कण भी हमसे अलग नहीं है, उसकी हानि लाभ से हमको दुख और सुख होता है, उसी तरह संसार के प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी हमारा ही है। हम सब मिलकर एक अंग बनाते हैं जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। जब तक यह भ्रम हमारे अंदर रहता है कि हम अलग हैं और अन्य सब जीव अलग हैं, तब तक हमको दुख रहता है और हम राग द्वेष में फंसकर उनसे लड़ा करते हैं तथा अपने और दूसरों के लिए अशांति का आह्वान किया करते हैं। हम अशांत रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। जिस समय हमको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सब हमारे हैं और हम सबके हैं, तभी शांति हमारे पास आने लगती है और हमारी हो जाती है। इस एक ख्याल को पुख्ता करने के लिए तथा

उसको अनुभव में लाने के लिए बड़े ही त्याग की आवश्यकता होती है। ये त्याग वाणी से कहने मात्र का नहीं होता, बल्कि दिल का होता है। हमारा हृदय पूर्ण रूप से ऐसा बन जाना चाहिए कि हमारा जीवन और हमारे काम दूसरों के लिए है, न कि अपने लिए। वास्तव में स्वार्थ बुद्धि का त्याग ही त्याग कहलाता है, न कि कार्यों का त्याग। गीता में कहा गया है, जो कामनाओं को त्याग कर निष्प्रिय होकर ममता और अहंकार को छोड़कर अपने कार्य किया करते हैं, उसी को शांति प्राप्त होती है। हम कर्म करते हुए चाहे

जो कामनाओं को त्याग कर निष्प्रिय होकर ममता और अहंकार को छोड़कर अपने कार्य किया करते हैं उसी को शांति प्राप्त होती है। हम कर्म करते हुए चाहे वो कर्म सांसारिक हो या पारमार्थिक, जब तक अपने लाभ का ख्याल दिल में रखेंगे, जब तक ममता और अहंकार की धुरी पर हमारे कर्मों का चक्र घूमता रहेगा तथा जब तक हम अपने को दूसरों से अलग समझते हुए सुख दुख के बंधन में जकड़े रहेंगे, तब तक शांति हमारे भाग्य में नहीं आ सकती। शुद्ध विचारों को अपने में भरना, उनके अनुसार जीवन बनाना, हर समय उसकी जांच पड़ताल करते रहना तथा अपनी उन्नति के लिए चिंतित रहना ही शांति और संतोष प्राप्ति के साधन हैं। ये साधन हमें आप्त महापुरुषों या गुरुजनों के द्वारा मिल सकते हैं। उनके समीप बैठने से ही हमको ईश्वर पर विश्वास हो सकता है और हम शांत और निश्चिंत जीवन की ओर अग्रसर होते जाते हैं। साधारण जीवन बिताने वाले भी ऐसे लोग जो स्वार्थी नहीं हैं तथा जिनका काम दूसरों को ही सुखी बनाना है, वे दूसरों की अपेक्षा खुश दिखाई देंगे। उन्हें शोक बहुत कम होता है और वे अपनी इसी धुनी में खुद को भूलकर सेवा भाव अपना लेते हैं। पर सेवा ही अहंकार और ममता के त्याग की सीढ़ी है और सुख संतोष प्राप्त करने के लिए औषधि है। जो लोग अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही कमाते हैं, वे दुखी और असंतोषी रहेंगे जब तक वह अपने स्वभाव को बदल न डालेंगे। केवल अपने लिए ही सुख ढूंढने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, ये निश्चित है। जब हमको इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि ये सारी दुनिया हमारे उस जीवन में शरीक है जो हमारे अंदर होकर बह रही है, उस समय हम समुद्रवत गंभीर और शांत हो जाएंगे। चुलबुली चंचल स्वभाव वाली नदियां आएंगी और हमसे मिलते ही अपने स्वभाव को त्याग कर हमारी जैसी बन जाएंगी। इस अवस्था में पहुंचकर हम खुद भी शांत रहेंगे और दूसरे अपने मिलने वाले को भी शांत कर देंगे। तात्पर्य यह है कि वासनाओं के त्याग से ही शांति मिलती है। इसी शांति को असली ज्ञान कहना चाहिए। यही शांति है, मुक्ति है, भगवत दर्शन है। हमको मृत्यु से पूर्व इस शांति को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसकी प्राप्ति का साधन निष्काम उद्योग है। इसके द्वारा ही यह सुलभ होती है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। शांति विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, आलेख संकलन और वाचन स्वर था पद्मनाभ शर्मा का। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में होए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही, संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल ह अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। और प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में होए नगरीय निकाय चुनाव पर काली 4 जून के मतगणना होही। कालिच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयोग ह मतगणना के जम्मो तैयारी लगभग पूरा कर ले है। बता दन कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर 1 जून के मतदान होए रहिस। नगरीय निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर होए मतदान में 84.58% मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग करिन। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगिस। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में राखे गए एक ठिन उच्च स्तरीय बैठका में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ले प्रदेश के नंदिया और बड़का नरवा में होवत रेती के अवैध उत्खनन ऊपर चर्चा करिन। राज्यपाल ह अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के निर्देश दिन। उमन कहिन कि रेती राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा के निर्माण पर एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन ओखर अनियंत्रित दोहन ले पर्यावरण ला गंभीर नुकसान पहुंचत है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली 4 जून के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत

0: अमरामा राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुई। मुख्यमंत्री के प्रवास लले के जिला कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन आज शिविर स्थल के निरीक्षण करके तैयारी के संबंध में जानकारी लेन। एकर पहली मुख्यमंत्री काली कांकेर जिला में सुशासन तिहार के तहत कांकेर कोंडागांव नारायणपुर और बस्तर जिला में संचालित योजना और विकास काम के समीक्षा करें। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाला ले जुड़े धन शोधन मामला के जांच के तहत आज राज्य के आने आने जगह में तलाशी अभियान चलाईस। एक कार्रवाई भिलई दुर्ग राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकाना में करेगी। तलाशी लिए गए प्रमुख जगह में पूर्व CGPSC सचिव JK ध्रुव के भिलाई स्थित निवास शामिल है। CRPF के सुरक्षा घेरा में ED अधिकारी मन दस्तावेज डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन देन ले जुड़े अभिलेख के जांच करें। ये कार्रवाई बच्चर 2020 ले 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के CBI जांच के आधार में करे जाते। ED के टीम दुर्ग जिला के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमृत कुमार खलखो के निवास के घलो जांच करीस। अधिकारी मन संपत्ति बैंक खाता और दूसर वित्तीय अभिलेख ले जुड़े दस्तावेज के परीक्षण करें। इकर अलावा ED राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास में घलो दबिश दिस। छत्तीसगढ़ में सड़क ऊपर रहिया लैका मन के पुनर्वास पर जून महीना में विशेष सघन अभियान चलाए जाते। राज्य सरकार के बाल सक्षम नीति के तहत सड़क में रहिया भिक्षावृत्ति बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लैका मन के पहचान करके उमन के बचाव और पुनर्वास करे जाते। अभियान के तहत लैका मन ला सुरक्षित आश्रय शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते। जिला कलेक्टर मन के अगुवाई में गठित विशेष बचाव टीम डहाले चिन्हित हॉटस्पॉट जगह में अभियान चला के लैका मन ला संरक्षण दे जाते। राज्य सरकार कहे है कि लैका मन के पुनर्वास सरलक प्रक्रिया हरे और ये काम साल भर तक चालू रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के NDA सरकार के 12 बच्चर पूरा होए में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले आज रतिहा 8 बजे ले छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम के प्रसारण करे जाही। एक कार्यक्रम के बेरा 5 मिनट के रही और एक प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके शंकर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिखित परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दे है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 ले 9 जून तक रखे जाही। परीक्षा हरेक दिन 2 पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक आयोजित करे जाही। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर बिलासपुर दुर्ग जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित करे जाही। आयोग बताए है कि प्रवेश पत्र 25 मई के जारी करे जा चुके है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ले अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत है। आयोग स्पष्ट करे है कि कोनो भी अभ्यर्थी ल अलग से प्रवेश पत्र या SMS नहीं भेजे जाही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के दूसरा अवसर पर मुख्य परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई ले 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई ले 21 जुलाई तक रखे जाही। दोनों परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12:15 बजे तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ ला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राष्ट्रीय सम्मान मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला राज्य पर गर्व के बात बताइन है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाला राज्य मन की श्रेणी में सबले ज्यादा वेंडर पंजीकरण के मामला में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान पाए है। जेखर पर राज्य के चयन PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड खातिर हुए है। मुख्यमंत्री ह ए उपलब्धि बर ऊर्जा विभाग,

0: क्रेडा अउ विद्युत वितरण कंपनी के टीम ल बधाई दिन हे। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना बर आवेदन आमंत्रित करे हे। ये प्रमुख राष्ट्रीय पहल के उद्देश्य वैश्विक स्तर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्थान और उद्योग ले भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ और पेशेवर मल्ला देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र को ती आकर्षित करना है। दुर्ग पुलिस शेयर बाजार में निवेश के नाव में लाखों रुपया के धोखाधड़ी के मामला में एक जिन आरोपी ल गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार सुपेला रहवासी एक मनखे है, ज्यादा मुनाफा के लालच दे के कई मनखे मन ल रकम निवेश कराइस और ओमन ले करोड़ों रुपया के ठगी करीस। शिकायत के आधार में पुलिस आरोपी के खिलाफ दो ठिन आने आने प्रकरण दर्ज करे है। पुलिस आरोपी कराले एक ठिन कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन ले जुड़े दस्तावेज जब्ती करे है। आरोपी ला न्यायिक रिमांड में भेज दे गए हैं। और पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधड़ चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधि शुरू हो गए है, एक सेती राज्य के कई ठीन जगह में मौसम अचानक बदला थे। इही बीच बीजापुर जिला के पेरमपल्ली गांव में गाज गिरे ले एक माई लोगिन के मौत हो गए। उन्हें दंतेवाड़ा जिला के चंदेना साप्ताहिक बाजार में काली गाज गिरे ले 11 मनखे एक चपेट में आ गिन, जेमाले एक महिला के मौत हो गए। एकर अलावा मनेन्द्र कड़करा चरखर गांव में घलो गाज गिरे ले एक महिला के मौत हो गए। उन्हें 5 झीन दूसर मनखे झुलसा गए है। और अब थोरकुन समाचार सार में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त आईएएस बीकेएस रे के निधन हो गए है। ओमन लंबा बेरा ले बीमार रहीन और ओखर उपचार रायपुर एम्स में चलत रहीस। रायपुर नगर निगम है संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाला यूजर चार्ज में बढ़ोतरी करे है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्ति में सालाना 120 रुपया, उन्हें व्यावसायिक संपत्ति में 360 रुपया के बढ़ोतरी करे गए है। और शक्ति जिला के सेंदुरस गांव में पाछू रतिहा एक सियान दंपत्ति के हत्या कर देगी। पुलिस मामला के जांच शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल है अवैध और अनियंत्रित रेत खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। और प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। एक रिसंग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 और 12 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम कोधुली। कार्यक्रम के आरंभ में ये सुनते हैं गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के सुरों में ये छत्तीसगढ़ी ददरिया गीत।

गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के गाए इस छत्तीसगढ़ी ददरिया गीत के बाद आइए अब सुनते हैं सुखरंजन राम और साथियों के स्वरों में ये सरगुजिया पायर गीत।

सुखरंजन राम और साथियों के गाए इस सरगुजिया बायर गीत के साथ ही आज की गोधूली संपन्न होती है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मासूम से आरती मुखर्जी की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म मासूम का गीत आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज में। अगली पेशकश है गुलशन बावरा का लिखा गीत, आर डी बर्मन की बनाई धुन पर, शैलेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है खेल खेल में।

0: कार्यक्रम माधुरी के अंत में आइए सुनते हैं भूपेंद्र और रूना लैला की आवाज में फिल्म घरौंदा का ये दो गाना। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत है जयदेव का।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

भूपेंद्र सिंह और रूना लैला के गाए फिल्म घरौंदा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो।

0: सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी, कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
5: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
4: प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल 4 जून को मतगणना होगी, कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद से प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर चर्चा की। राज्यपाल ने अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन इसके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। श्री डेका ने कहा कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 4 जून को गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कांकेर जिले में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणाम उन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के तहत आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई

0: भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकानों पर की गई। तलाशी लिए गए प्रमुख स्थानों में पूर्व सीजीपीएससी सचिव जेके ध्रुव का भिलाई स्थित निवास शामिल है। ये कार्रवाई वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आधार पर की जा रही है। ईडी की टीम ने दुर्ग जिले के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमृत कुमार खलको के निवास पर भी जांच की। अधिकारियों ने संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय अभिलेखों से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके अलावा राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के निवास पर भी तलाशी ली गई। वहीं ईडी ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर भी दबिश दी। सूत्रों के अनुसार ईडी कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत, उससे जुड़ी संपत्तियों तथा वित्तीय लेनदेन की श्रृंखला का पता लगाने के साथ ही मामले में अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रात 8 बजे से छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट की होगी और इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया है कि प्रवेश पत्र 25 मई को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्तियों पर सालाना 120 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना 360 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये अतिरिक्त राशि संपत्ति कर के साथ ही वसूली जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी

24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। इस बीच बीजापुर जिले के पेरमपल्ली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग की चपेट में आए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ के पास चरखर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया को विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। रायपुर के गुढ़ियारी में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के कारण कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की लारा परियोजना ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बतला देते हैं। पहले सुनिए हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें चर्चा का विषय है धान की थरहा लगाने की उन्नत तकनीक और लखपति दीदी योजना। रात 8 बजे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। 8:05 पर सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकते हैं। रात 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा। 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। 10:30 पर आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे। ये तो थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आइए अब एक नजर डालते हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनते हैं। 6:30 पर विचार बिंदु का प्रसारण किया जाएगा। 6:35 पर रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनवाते हैं। कृषि संबंधित सामयिक सुझाव आप सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात में 6:45 पर।

लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुनेगा सुबह 7 बजे। 7:15 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त सूचनाएं और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकते हैं। 8:30 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जाएगा। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनेगा सुबह 9 बजे। 10 बजे फोन इन लोक संगीत का कार्यक्रम गांव कर गीत का प्रसारण किया जाएगा। फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेगा 11:05 पर। एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाते हैं दिन में 12 बजे। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन हम पेश करेंगे 12:30 पर। महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 1:10 पर। इसमें क्रम होगा गुलदस्ता और कुछ गीत संगीत बहनें सुनेंगी। 1:40 पर और रात 9:30 पर आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपको सुनवाएंगे। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकते हैं।

शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे हमर हाथी हमर गोठ। सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या सुनेगा 5:05 पर। 5:30 पर युवा साथियों के कार्यक्रम विवाणी में क्रम होगा महफिल और युवा सोच आप सुनेंगे। लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली सुनेगा 6:20 पर। 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी हम पेश करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेगा 7:05 पर। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:20 पर। इसके अंतर्गत 7:30 पर किसान वाड़ी कार्यक्रम में नया दौर क्रम में ग्राम लवगांव ब्लॉक लुंड्रा के कृषक से बातचीत होगी। विषय है रबी की खेती से लाभ। रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जाएगा। रात 10 बजे प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 और 28 सेकंड हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मुख्तारुद्दीन की लिखी इस गजल के साथ। आवाज है हरिहरन की। अंधेरे में आंखें मेरी बन गई, दिए दो कहीं दूर जलते हुए, सफर और मौसम बदलते हुए।

हे हरिहरन की आवाज में आपने डॉक्टर मुख्तारुद्दीन की ये गजल सुनी। रोशनी औरों के आंगन में गवारा न सही, रोशनी औरों के आंगन में गवारा न सही, कम से कम अपने ही घर में तो उजाला कीजिए। लीजिए पेश है चित्रा सिंह की आवाज में रईस अख्तर की ये रचना।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है जमीर काजमी की लिखी गजल चंदन दास की आवाज में। मैं जो सोचूंगा तुम्हें और समर जाओगे, मैं जो सोचूंगा तुम्हें और समर जाओगे, फूल से चेहरे पे कुछ और निखार आएगा।

सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। कार्यक्रम के अंत में आपने जमीर काजमी की लिखी गजल सुनी चंदन दास की आवाज में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 और 51 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनने वाला जम किसान भैया बहनी मिला तिजई का जय जोहार, राम राम और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आज है बुधकर दिन और आज हम एक पूरा कोशिश करते कि आज का जो हमारे कार्यक्रम है उमर कृषक बहनी मल्ला समर्पित रही। बहनियों देखिए, महिला मल्ला आत्मनिर्भर बनाए बर और बहनी मल्ला आत्मविश्वास कर मन कर बढ़ाए बर लखपति दीदी योजना का लाहमन सुना थी। लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू कर गई एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिला मल्ला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उमल्ला उद्यमी बनाए बर प्रेरित करना है। आखू भी बहनी मन अपन हिसाब कर छोटा मोटा जितना काम करत रहीन, लेकिन जैसे अगर उमे सरकार कर आर्थिक मदद मिल जाते, कहीं कर प्रशिक्षण हर भेटाए जाते, तो देखिए उमन बड़खा उद्यमी चला आंट्रप्रनर कथे अंग्रेजी में ना, देखे हुई है सुने हुई है, आजकल बहुत ये शब्द हर चलता है, वो बन जाते बहनी।

तो देखिए, एक तरह से कहे कहे के मतलब है कि जब सरकार मन आर्थिक रूप से बहनी मन सशक्त कर देते हैं, हाथ ला मजबूत कर देते हैं, तो बहनी मन ऐसा उद्यमिता बनाते हैं, ऐसा उद्योग ला स्थापित करते हैं जेकर से उमन अपन साथ साथ स्वयं और बहनी मन कर कई जुड़ बहनी मन जे में जुड़ते और सब मन कर हाथ ला मजबूत करते हैं। देखिए, योजना करता है स्वयं सहायता समूह सर जुड़ी महिला मन ला विभिन्न प्रकार कर कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करल जाते ताकि उनकर वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपया ले अधिक हो सके। देखिए कितना बढ़िया योजना है, एक ही का लखपति दीदी योजना नाम है। और हमारे कति का तो कितना बगरा बहनी मने लखपति दीदी योजना में से लाभ भी उठाते हैं, बन गई न है और लखपति बन गई न है। हमारे कभी कभी भेंट करती हूँ मंजक, और कई बहनी मन तो भाई खेती किसानी में हाथ अजमाई न है, बढ़िया बढ़िया खेती करते हैं। कई बहनी मन है मशरूम कर खेती भी करते हैं, फूल कर खेती करते हैं। कई बहनी मन है कि केकस केकस स्व सहायता समूह से जुड़ के और हस्तकला में कई तरह कर बनाता है, रिकिम रिकिम कर सजाए अगर चाहे कहीं कहीं आऊ। तो देखिए, ये योजना का अगर उद्देश्य देखब ना तो बहनी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करना है, ग्रामीण महिला मन कर आय बढ़ाकर उमन ला आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। एकर साथ साथ गरीबी उन्मूलन तो है ही है भैया बहनी हो, ग्रामीण परिवार में जीवन स्तर ला सुधार करना है जेकर बहनी मन भी अगर अगर काम में लग जाते हैं तो घर कर पुरुष और बहनी दोनों अगर काम करते हैं तो देखिए घर परिवार हर बहुत बढ़िया आसानी से चलते हैं। लड़का मन कर पढ़ाई लिखाई होगी, सियान मन कर तिहा होगी, बर बीमारी होगी, जो भी होते वो मतलब सब ला दोनों भाई पति पत्नी मिल के चाहे भाई दोनों जन मिल के बढ़िया से ओला करते हैं। एकर साथ साथ कौशल विकास कर जो वृद्धि करना है, महिला मन ला व्यापार और तकनीक क्षेत्र में प्रशिक्षित करना ताकि उमन खुद रोजगार ला शुरू कर सके। अपन जैसे मैं कहें ना कि अपन साथ साथ आऊ बहनी मन ला जोड़ के और बड़ा स्तर में काम कर सके और आऊ बहनी मन ला भी काम दे सके और बहनी मन ला भी रोजगार दे सके। लखपति दीदी योजना कर अंतर्गत महिला मन ला उमन कर रुचि कर अनुसार अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग दिहल जाते, जैसे होगी इसकी कृषि और पशुपालन। अब एमे तो जैसे अभी हमन थोड़ा दिन पहले एक नया योजना ला सुनेन कि छेरी जो पालते हैं बकरी पालते हैं बहनी मन, तो ओमन बर भी भाई प्रशिक्षण है कैसे कि केकस कोई अगर छेरी मन ला बकरी मन ला बर बीमारी लगता है और भाई ओमन ला समझ के कभी कभी का होते कि भाई ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाते बर बीमारी लग जाते तो लगातार कई भाई बकरी मन मर जाते। तो ऐसन में बहनी मल्ला कैसे उमन कर तिहा करना है, देखभाल करना है और कैसे समझना है कि केकस कोई बर बीमारी तो बकरी मल्ला नहीं पकड़ा था, ये सब भी तकनीक मतलब प्रशिक्षण में समझाल जाए। जैविक खेती, मशरूम उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन और मुर्गी पालन में देखिए प्रमुख है। ज़्यादातर हमन देखती ना जैविक खेती करे वाला भी हमर कितना बहनी मन से हमन भेंट करें और कितना बगड़ा जैविक खाद बनाता है, संगे संग में केचुआ वाला भी बेचाता है, जैविक खाद तो बेचते हैं। मशरूम कर खेती कर भैया बहनी मन ला भी हमन भेंटें, बढ़िया कराता है और आत्मविश्वास से भर गिन है। एकर साथ साथ भाई कहते हैं कि अभी जितना हमन करते हैं उकर से आगू हमन लक्ष्य रखी ही कि आगू आए वाला समय में हमन वाला दुगना करबो, ऐसे हो ही। तकनीकी कौशल कर माध्यम से ड्रोन चलाना और कर मरम्मत करना, जैसे खेत में कीटनाशक छिड़काव खातिर ड्रोन दीदी कर पहल है, हमर कति भी बहनी मन अबेला समझ गई है और उकर योजना कर जानकारी ले आता है। कई राज्य में तो ड्रोन दीदी मन एकदम तैयार हो गई है प्रशिक्षण लेके और शुरू कर देने काम ला। लघु उद्योग में सिलाई कढ़ाई बुनाई, LED बल्ब बनाना, अगरबत्ती मोमबत्ती निर्माण और फ्रूट प्रोसेसिंग जैसे अचार पापड़ मसाला बनाना भी इसमें शामिल है। गाँव गई में देखिए हमारे कति कर बहनी मन ना और घरे रह रह कर उनके ना इतना बढ़िया मने हस्तकला में माहिर हैं। कई तरह कर एक एक बहनी तो 20-20 10-10 तरह कर अचार बनाए में माहिर है, पापड़ बनाते मसाला इतना बढ़िया बनाए देते हैं कि कोनो सब्जी में चुटकी भर भी डाल दी है तो उकर स्वाद हर बढ़ जाए। तो ऐसे ही से बहनी मन है तो ओमन ला भाई तकनीकी रूप से और प्रशिक्षित करके ओमन ला फ्रूट प्रोसेसिंग कर भी प्रशिक्षण दे के और जैसे मशरूम उत्पादन करते हैं वो बहनी मन भी हैं, चाहे कोई फल उत्पादन करते हैं वो बहनी मन भी हैं कि फ्रूट प्रोसेसिंग कैसे करल जाए, काका में भाई सामान लगी मशीन लगी, ये सब कर जानकारी दे के प्रशिक्षण दे के और बहनी मन कर हाथ ला और मजबूत करल जाता है। वित्तीय सहायता और अपन बिजनेस शुरू करे खातिर बैंक

माध्यम से बेहद आसान किस्त में और कम ब्याज में लोन कर सुविधा भी उपलब्ध है। अब पात्रता कहिया कि का है, तो जो हमर बहनी मन है, आवेदिका मन है, वो मतलब भारत का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ये तो भाई पहला होगी अब जरूरी है हर। महिला मन कर आयु आमतौर पर 18 से 50 बच्छर कर बीच होना चाहिए। एक अलावा सबले महत्वपूर्ण शर्त है कि महिला मन ला कोई ना कोई स्व सहायता समूह से SHG से जुड़ा होना चाहिए। अब स्व सहायता समूह ले जुड़े हो ही तब ना भाई कैसे कैसे पैसा ला लेना है, कैसे करना है, पैसा का उपयोग कैसे करना है, ये सब कर जानकारी हो ही। आवश्यक दस्तावेज अगर हम देखब तो कोई भी महिला जैसे है जो भारत का नागरिक है, ये योजना का लाभ लेते हैं तो ला सामान्य दस्तावेज का आधार आवश्यकता होते, जैसे आधार कार्ड होगी, निवास प्रमाण पत्र होगी, आय प्रमाण पत्र होगी, बैंक खाता का विवरण, स्व सहायता समूह कर सदस्यता प्रमाण पत्र चाहे कार्ड होकर होते जो, और फोटो छोटा पासपोर्ट साइज के, और जो मोबाइल नंबर उनका चलाता है जिला वो एक्टिव रखते हैं माने ओला भाई बढ़िया चालू रखते हैं, वो मोबाइल नंबर भी वहाँ देना है। ये योजना जमीनी स्तर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर माध्यम से संचालित करल जाते हैं। इमें आवेदन करे कर तरीका है जैसे है आंगनबाड़ी चाहे ब्लॉक कार्यालय में महिला मन अपन नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, विकास खंड कार्यालय चाहे ग्राम पंचायत में जाकर एक जानकारी ले सकते हैं। एकर अलावा SHG लीडर से संपर्क करके ले सकते हैं, जिनमें महिला अपन स्व सहायता समूह का लीडर चाहे कोई भी अध्यक्ष हो चाहे सचिव कोई भी रहते ओमन जग बात करके और समूह कर माध्यम से आवेदन फॉर्म भर के जरूरी दस्तावेज ला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पास जमा करा सकते हैं। देखिए स्व सहायता समूह से जुड़ल जो बहनी मन है ना ओमन सब जन कर बढ़िया मदद करते, एक जन बहनी लाभ कमाए लगते ना बढ़िया ओमे जान जाते कैसे कैसे कागज पत्र ला बनाना है, तो देखिए बगरा बहनी मन मदद करते और ऐसे ऐसे तो कई बहनी मन मैं देखता हूँ आजकल जानता हूँ सब बढ़िया बहनी मन एकजुट हो के और बढ़िया कर से लाभ ले आता है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई जिन जिन बहनी मन बढ़िया कोई काम ला शुरू करना चाहत हो ही चाहे कोई कौशल प्रशिक्षण कर माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहत हो ही तो लखपति दीदी योजना में जरूर शामिल हो जाए, और इतना बढ़िया सरकार का योजना है तो एक लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब देखिए आज हमन जो जाना तहन कि आज जो है विश्व साइकिल दिवस हमन मनाता है। भैया बहनी हो देखिए एक समय रहीस कि हमन जो बचपन में रहें तो शान ले अपन साइकिल लेके दौड़ात रहें, पहले तो कैंची चलात रहें, कैंची में सीख जाएँ तो एक आध गो लड़का ला आगू पीछे बैठा के, और पहले लेडीज जेंट्स साइकिल खास नहीं रहे तो तेवले कोनो साइकिल भेटाए तो हमन धना धन वाला कुदाई, और आज के लड़का मतलब कोनो कोनो ला साइकिलो चलाए नहीं आए हमन कथी कैसे होएगी साहब भाई। तो आज कर जो दिन है खास कर जैसे जो विश्व साइकिल दिवस है हर बछरेला 3 जून ला मनाल जाते, और एक उद्देश्य का है साइकिल का उपयोग ला बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण ला कम करे कर प्रति जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य और फिटनेस खातिर साइकिल चलाए का लाभ ला बताना, और साथ ही साथ सस्ता सरल और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था ला प्रोत्साहित करना। और अब तो सबले देखिए सबले महत्वपूर्ण होगी से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य। तो मैं कहता हूँ कि भाई आज कर जो समय है इतना बदली सा है, अब कोनो कोनो कभी कभी निकालते ना अपन साइकिल तो भाई सब कहते हैं साइकिल दारा है, साइकिल दारा है, ऐसे कहते हैं बोला कैसे होएगी भाई समय हर बदल गई, साइकिल दार ला बढ़िया समझना चाहिए। और जोन जोन बहनी मन भी साइकिल चलाते ना कहूँ गाँव गाँव से आते हैं तो मैं देखता हूँ भाई धरा रपटा एकदम आते और धरा रपटा एकदम फुर्ती से अपन काम ला करते, कहे कि ओकस भाई साइकिल चला चला स्वास्थ्य हर भी बहुत बढ़िया होएगी सह, हृदय हर भी मजबूत होएगी सह, फेफड़ा हर भी मजबूत होएगी सह। तो आज कर जो दिन है देखिए इला लाभ लेकर समझना जरूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य में तो कितना सुधार होते, हृदय रोग कर जोखिम भी बहुत कम हो जाते, साथ साथ ईंधन कर बचत होते। अभी देखी जैसे जो संसार जो विश्व कर अभी स्थिति है भाई लड़ाई झगड़ा चलता है तो ओमें भाई ईंधन कर समस्या दिसता है, ऐसन में अगर साइकिल दार मन रही हमारे पास साइकिल रही तो हम अल्लाह काकरो जगह भाई डीजल पेट्रोल कर जरूरत नहीं पड़ी, अपन अपन साइकिल ला भाई दुरुस्त करी अब धर से कपड़ा मार के ओला लेके निकल सकता हन। तो इतना माने अब कार्बन उत्सर्जन कर कमी कभी कभी देखिए शहर कति चाहे गाँव कति दिक्कत हो या कि भाई चटिक मटिक भीड़ हो जाए जाम लग जाए तो घों घर्रा इतना करिया धुआं उठेल कि बारे ऐसे कर मासक ला पहना
पहिना ना होना।

हो जाए लगे। तो साइकिल अगर देखिए, साइकिल में अगर जाम लग जाए तो कहूँ रह कोई नहीं होए, ना कोई लगाड़ी बंद करे के जरूरत है, ना घों घर्रा आवाज हो ही, और इतना बढ़िया सब शांत खड़े रही भाई। जैसे जैसे धीरे धीरे भीड़ आगू बढ़ी तो साइकिलदार मन भी आगे बढ़ जाए। तो मैं कहता हूँ कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन का जो उत्सर्जन है ना, जेकर से पर्यावरण वातावरण ला बेहद नुकसान होता है। साथे साथ रौरे देखे हुई है भैया बहनियों, कभू कभू तो ऐसे हो जाए कि भीड़ भाड़ में फंस जाइया 5 मिनट तो एकदम करिया करिया भाई चट्टा चट्टा करके लग जाए, कहूँ मुँह का धुआं हर जम जाए, तो आँखी नाक में तो एकदम दिसे लोहर। तो एक कस अगर हमन साइकिल फिर अपनाबो ना, और एकदम आनंद कर साथ में, तो कथों इला अपनाना जरूरी है। अब घरे कहीं एक्सरसाइज करे पर खाली वही साइकिल दौड़ाते हैं ओला नहीं, घर भीतरे बाहर निकालना है ओला। यातायात कर जाम में भी कमी हुई है और सबला मैंने सुरक्षित और एकदम सुविधापूर्ण यात्रा हुई। अभी विश्व साइकिल दिवस 2026 एक संदेश है, स्वास्थ्य जीवन स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास खातिर साइकिल अपनाएं। देखिए कितना बढ़िया स्लोगन है कि साइकिल केवल एक साधन नहीं बल्कि स्वस्थ और हरित भविष्य कर एक कदम भी है। तो जरूर हम सब ला ये चीज कर ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो जो घर में लड़का मना है तो बड़का मन तो जितना है भाई, वो घर कर भाई अभिभावक मना है, माता पिता मना है, चाहे कोई भी है, तो वो मान ला साइकिल कर चलाए पर जरूर सिखाना है। काहे कि देखिए कोई भी अगर गाड़ी भी चलाते हैं आगू चल के, टू व्हीलर भी चलाते हैं, लेकिन साइकिल कर जो बैलेंस और बनाए लेते ना तो वो कोई भी गाड़ी ला बढ़िया चला लेते। तो साइकिल ला पहले सिखाई और उकर गुण ला पहले बताई, और जो हमारे पर्यावरण है वो ला साफ स्वच्छ रखे में एक कदम अपन अपन बढ़ाई। देखिए चटी संदेश मनला है, ये मनला सुनल जाए फिर आगू गोट करम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भैया बहनियों, लगी चली एक गो हमन छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनते ही विजय सिरदार और संगता कर गाले फिर आगो गोट करो।

मैया में भुलाए हस 84 लाख जन्म लप्पा के

जहन करबे माया के गुमान। विजय सिरदार और संगतमन कर गाल ये छत्तीसगढ़ गीत द्रव सुमन सुनत रहें। भैया बहनियों देखिए जैसे कहतरीन की भई अल नैनों कर प्रभाव ले, इस समय मानसून हर चटी भई धीमा रही कम रही, लेकिन देखिए जैसे खटखटाहट हुई सह और लगता है कि भई दो तीन दिन हमारे कति तो बढ़िया बरखा होता है। अब यही कामना है ईश्वर से कि जो हमार भई देखिए सीमांत किसान मन रहते हैं मानसून आधारित खेती करते हैं, तो यही अपेक्षा रखते हैं कि और यही आशा रखते हैं कि बढ़िया मानसून आए और बछर भर पानी कर जो आवश्यकता रहते ओकर पूर्ति हो। तो अब जो है धान कर बढ़िया पैदावार खातिर स्वास्थ्य और मजबूत थरा कर तैयारी करे कर समय आएगी सह। अब देखिए उन्नत तकनीक से थरा लगाए कर जो विधि है उसमें उन्नत किस और बीज कर मात्रा ला पहले देख लेना चाहिए, क्षमा करिए, किस्म कर चुनाव ला करना चाहिए, अपन क्षेत्र कर मिट्टी और मौसम कर अनुकूल उन्नत और हाइब्रिड बीज कर भी चयन करना चाहिए। अब देखिए जैसे कहते हैं वैज्ञानिक मन मौसम विशेषज्ञ मन कि ए बार मानसून हर चटी वही कम रही, तो वो हिसाब से बीज कर चुनाव करना है भैया बहनी हो। बाकी तो भाई जैसे बढ़िया भी मानसून आई तो

भी बढ़िया है, धन्यवाद है प्रकृति ला, लेकिन अपन तैयारी ओकस रखना है। बीज कर मात्रा सामान्य किस्म कर लिए प्रति एकड़ 15 से 20 किलोग्राम और हाइब्रिड की खातिर 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। बीज शोधन करना है तो जो बीमारी मन से हो उनसे बचाव खातिर आजकल देखिए शोधित बीज भी आते हैं, तो अगर पहचान है चिन्हार है उला जैन के देख के पूछ के लेना है। और अगर शोधित करते हैं तो नमक पानी में 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम साधारण नमक मिला के बीज डालकर तैरे वाला हल्का बीज ला छान के फेंक देना, और भारी बीज ला साफ पानी में से 2-3 बार धोई के और फफूंद नाशक उपचार करे बर खातिर साफ कर गए बीज में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज कर दर से उपचारित करना है। उपचारित बीज ला 24 घंटा पानी में भिगो कर और फिर गीला जूट कर बोरी में ढक के 24 से 36 घंटे पर छाँव में रखना ताकि बढ़िया अंकुरण निकल आए। नर्सरी बेड चाहे थरहा तैयार करे बर मई जून कर महीना में खेत में 2 से 3 बार बढ़िया जो जुताई करीन है और पानी भर के में बढ़िया पलेवा करीन है। किसान भैया बहनी मन इतना तो करीन हुई तैयार करी हूँ, नहीं तो अभी भी बढ़िया वाला तैयार कर सकते हैं। प्रति वर्ग मीटर बेड में 1 से 2 किलोग्राम सड़ा गोबर कर खाद, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फॉस्फोरस और 5 किलोग्राम पोटास मिलाना चाहिए। अब देखिए कि जो अंकुरित बीज का तैयार क्यारी ला शाम के एक समान रूप में बिखेर देना चाहिए। शुरुआत दिन में क्यारी नम बनाए रखना चाहिए और पौधा ला थोड़ा बड़ा होने में नाली में पानी देना चाहिए और बुआई से 3 से 4 दिन के भीतर प्रति ला प्रीति क्लालो क्लोरो या ब्यूटा क्लोरो दवा का छिड़काव करना चाहिए। और अगर पत्ता मन पीला दिखत है चटिक मटी तो 0.05% जिंक सल्फेट और 1% यूरिया के घोल कर छिड़काव करना चाहिए। अब देखिए बुआई कर सही समय शुरुआत शुरू होगी से आएगी से अवधि 21 से 25 दिन बाद जब पौधा 4 से 5 पत्ती हो जाते तो अगर थरहा रोपाई खातिर तैयार हो जाते इला सावधानी से उखाड़ना चाहिए। सब किसान भैया मेहनी मन हमारे यहाँ कर खेती करे में एकदम माहिर है और धान कर खेती तो हम वगैरह करते तो ऐसी चीज़ जानता है। अच्छा ये चीज़ भी ध्यान देना है कि हमन कौन सा किस्म कर ध्यान कर धान कर चुनाव करी है वही हिसाब से भाई ओला लगाना है और सिंचित क्षेत्र में का व्यवस्था है कैसे है ओला भी चटी ध्यान देना है। अब मानसून आगमन से 20 से 25 दिन पहले हमन लथरहा डाल देना चाहिए, जैसे 25 मई से 15 जून कर बीच जो समय होते तो अभी भी देख ली चटी कहते हैं कि 2 दिन में केरलम से मानसून का शुरुआत हो ही, लेकिन अभी जो बरखा हमार कति होता है इलाका समझी में तो नहीं कह पाता हूँ। तो भाई वही कसन तैयारी अपन रखना है और यही आशा कर साथ यही अपेक्षा कर साथ कि किसान जैसे जैसे उत्तर उत्तर वृद्धि कर ही हमारे देश भी आर्थिक विकास में आगू बढ़ी। तो भैया बहनी हो अपन अपन तैयारी ला शुरू करना है। अब देखिए सफलता कर कहानी में जो हमर आज कर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एल के पैकरा, ये इनकर जो विषय है बातचीत हुई ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खियों मन कर प्रबंधन कैसे करना है ये विषय पर विस्तार से बताने लगेला सुनल जाए।

0: किसान भैया बहनी हो, मैं आज संगे हूँ डॉक्टर केएल पैकराकर, सह संचालक अनुसंधान प्रमुख वैज्ञानिक कीट विज्ञान, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर करें। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: 20 मई कर दिन
1: जी
0: हमन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए
1: जी।
0: आज हमारा विषय है मधुमक्खी पालन व्यवसाय में ग्रीष्म ऋतु संदर्भित प्रबंधन तकनीक
1: जी।
0: तो हमारे जो किसान भैया बहनी मन है केकस मधुमक्खी पालन कर जो कार्यक्रम है रुझान बढ़े
1: जी जी
0: और मधुमक्खी कर संरक्षण हो, विस्तार से चटिक हमारे किसान भैया बहनी मन बताई।
1: नमस्कार किसान भाइयों, अभी जो समय सीजन चल रहा है बहुत भीषण गर्मी का है, और चूंकि हम लोग भी सभी जानते हैं जिस तरह से हम लोग गर्मी से बचने के लिए अपना उपाय अपनाते हैं, वैसे ही जो मधुमक्खी पालक कृषक हैं उनको भी अभी मधुमक्खियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको ध्यान देने के लिए थोड़ी सी सलाह की ज़रूरत है और उनको कुछ प्रबंधन उपाय अपनाना चाहिए

0: जिससे कि मधुमक्खी पालन से कोई नुकसान ना हो। तो इस कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गर्मी का जो समय होता है, इस समय फूल बहुत कम आसपास में मिलते हैं। ना हमारे पास कोई अच्छी फसल होती है जिसमें कि अच्छे फूल हों, या आसपास जो है उस तरह के पौधे भी नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर फूल की कमी हो जाए तो मधुमक्खियाँ जो है उनका कॉलोनी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ फूल से ही निर्भर रहते हैं। उनको पराग और परागरस फूलों से मिलता है। अगर फूल की उपलब्धता ना हो तो उनका कॉलोनी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है।
1: जी
0: और चूंकि ये जो अपना मई और जून का जो महीना होता है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सबसे पहले तो उसमें उनके खान पान की व्यवस्था देखना बहुत ज़रूरी होता है। हमको अगर ध्यान में रखना है कि मधुमक्खी जो है अच्छा से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फूलों से परागकण या रस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कॉलोनी कमज़ोर हो जाएगा। तो इस संदर्भ में जो है, सबसे पहले अगर हमको ध्यान देखना है तो थोड़ी देर जो है किसी एक मधुमक्खी पेटी के बक्से के पास हमको खड़े होकर देखना चाहिए, ताकि मधुमक्खी जो बाहर से आ रहे हैं तो आते समय वो अपने पैरों में कुछ पराग के कण ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, वो हमको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं ला रहे हैं तो हमको जो है कुछ इस तरह के उपयोग या उपाय हमको अपनाना चाहिए, जिससे कि मधुमक्खियों को जो है हम उनके जीवन को बचा सकें। अगर मान लीजिए पराग कण अपने पैरों में नहीं ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हमको थोड़ी सी उनके देखरेख की आवश्यकता होती है। तो इस संदर्भ में जो है जैसे उनको कुछ न कुछ भोजन के लिए व्यवस्था करना है, तो इस संदर्भ में कृत्रिम भोजन के रूप में जो है जो शक्कर का घोल या गुड़ का घोल उनको
1: अच्छा
0: देना ज़रूरी रहता है। तो जिसमें 50% का घोल बनाकर गुड़ या शक्कर को जो है मधुमक्खी के पेटी के बक्से के अंदर जो है जो उनका भोजन का पात्र होता है फीडर, उसमें हमको रखना चाहिए, ताकि उनको भोजन के लिए जो है ज़्यादा भटकना ना पड़े। अगर हमको कॉलोनी से अच्छा ग्रोथ करना है और उनके शिशु का अच्छा ग्रोथ परफॉर्मेंस हो, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको कृत्रिम भोजन के साथ साथ में उनका जो अनुपूरक भोजन है उसको भी साथ में देना ज़रूरी होता है। तो अनुपूरक भोजन के रूप में, जैसे सप्लीमेंट्री डाइट्स के रूप में अगर हम देखें, तो उसमें जो हम शुगर सॉल्यूशन या गुड़ का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके साथ साथ में अगर हम उनके जो छोटे बच्चे शिशु लार्वा वगैरह हैं, लार्वा के फीडिंग के लिए जो है उनको भोजन की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए अगर गुड़ या शक्कर का जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके साथ में जो है मक्के का आटा का या चने के आटा का जो है उसको मिक्स करके अगर हमको बनाना है, तो मान लीजिए हम 50% जो है गुड़ ले रहे हैं और उसमें 30% जो है हमने मक्के का आटा ले लिया, और 10% या 20% जो है हम लोग चने का उसमें आटा ले लिए, और उसको फिर पानी में जो है थोड़ा सा घोल के उसको अच्छा सा थोड़ा गाढ़ा रूप बना लें, और बनाने के बाद जो है जो लकड़ी का जो फ्रेम अंदर जो अपना मधुमक्खी का फ्रेम है, फ्रेम के जस्ट ऊपर में जो है उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है रख देना चाहिए। तो उसमें उसको भी जो है मधुमक्खियां बहुत ही चाव से खाती हैं।
1: अच्छा, आटा का जो घोल बनाना है पेस्ट जैसे नहीं बनाना
0: पेस्ट
1: है?
0: पेस्ट जैसे बनाना है, बोला वो एकदम गाढ़ा, मतलब एकदम ढीला नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, ताकि ऊपर पट्टी में जो है वो आसानी से थोड़ा सा लगा रहे। और ये भोजन जो है 2-3 दिन के बाद जो है फिर से हमको देने की, 3 से 4 दिन में उनको दोबारा उस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दे खिलाते रहना चाहिए, जब तक कि उनका जो है प्राकृतिक भोजन उनको फूल पौधा ना मिलने लगे।
1: अच्छा, साधारण आँख से लहमन देख सकते थे कि पैर में परागण लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं,
0: जी जी जी
1: ये दिख जाए?
0: जी जी जी
1: अच्छा
0: उनके जो पिछली जोड़ी पैर होती है तो उसमें कुछ बालों का गुच्छा रहता है, और ये जब मधुमक्खियाँ फूल में बैठती हैं तो फूल में बैठते के समय उसमें जो पराग कण होते हैं उनके पिछले टांग में वो चिपक जाते हैं, और वही पराग कण को जो है फिर वो अपने मधुमक्खी छत्ते में लेके आती हैं और उनको संग्रहित करती हैं। वो पराग का संग्रहण करते हैं, उसके अलावा जो है वो पराग को उनके जो शिशुज रहते हैं उनको भी खिलाने में वो मदद करते हैं, हेल्प होता है उनसे।
1: अच्छा डॉक्टर पैकरा, जैसे कहा था कि जो घोल बनाना है, पेस्ट बनाना
0: जी
1: है, तैयार करना है, मतलब शक्कर पानी कर, चाहे गुड़ पानी कर,
0: जी
1: और मक्का का आटा होगी, चाहे चना का आटा, तो इला एक एक पेटी में कितना कितना मात्रा में रखना है?
0: देखिए, जो भोजन का पात्र होता है वो एक स्टैंडर्ड बना हुआ रहता है, तो भोजन का पात्र का जो गहराई होता है

0: लगभग फ्रेम जो बना रहता है मधुमक्खी के छत्ते का फ्रेम, जो उसी फ्रेम के साइज का ही होता है, तो उसमें जो है हमको इतना भरना है ताकि, और बीच बीच में जो है कुछ छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल देना चाहिए ताकि उसमें बैठ के जो है आसानी से उसको ले सकें। अगर हम उनको बैठने के लिए सफिशियंट जगह नहीं देंगे तो क्या होगा, उसमें गिर जाते हैं मधुमक्खियाँ, फिर वो निकल नहीं पाती हैं। तो कुछ उस तरह के तैरने वाला जो है छोटा टुकड़ा उसमें डाल देना चाहिए ताकि, या फिर उसके जगह पे हम स्पंज भी रख सकते हैं, जो फोम स्पंज वगैरह जो आता है उसको भी हम लोग रख सकते हैं, उसको और अच्छा से उनको फीडिंग करते बनता है।
1: तापमान लगातार राइज करत है तो एमे मधुमक्खी मन लगा समस्या हो सकत है, भोजन कर समस्या तो दिखत है।
0: भोजन के समस्या, दूसरा हमको, ये तो भोजन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, दूसरा हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमको ध्यान देने वाली है, तो चूंकि मधुमक्खी का बक्सा जो है हम बाहर खुले में रख देते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ धूप की वजह से जो है वो अच्छा उनका काम नहीं हो पाता है, तो उनके लिए छाया प्रदान करना या छाया वाले जगह में उनको रखना, शिफ्टिंग करना ज़रूरी होता है। छाया नहीं है तो ऊपर जो है कम से कम पैरा वगैरह उसमें डाल देना चाहिए, और शाम के समय जो है हल्का सा उसमें पानी छिड़काव कर देना चाहिए ताकि पेटी अंदर ठंडा रहे। अगर वैसा नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि छाया में उसको स्थानांतरित कर दें। और दूसरा पानी की व्यवस्था, चूंकि प्यास सबको लगती है, मधुमक्खियों को भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी की व्यवस्था जो है भोजन के जो पात्र हैं या उसमें, और जो अलग से जो है आप पेटी के बाहर में कटोरी में या उस तरह के बर्तन में जो है साफ पानी उसमें रख देना चाहिए, और हर एक डेढ़ दिन के बाद जो है उस पानी को बदलते रहना चाहिए। साफ पानी सबको ज़रूरी होता है, तो इस तरह से जो है उनको पानी की भी पूर्ति हमको करना चाहिए। इसमें गर्मी में एक और जो समस्या हम लोग देखते हैं कई बार जो है उसमें, हालांकि हमारे इस क्षेत्र में एक ब्लू बीटल करके हाई बीटल आता है, एक छोटा छोटा बीटल होता है, वो उसमें घुस जाते हैं और अंदर जो है वो जो भी मधुमक्खी रस वगैरह जमा किए रहते हैं उसको खाते रहते हैं या उनके पोलन वगैरह को खाते रहते हैं, और इससे मधुमक्खी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर इस तरह की वो समस्या अगर दिखती है तो उस पेटी की जो है तुरंत साफ सफाई करते रहना चाहिए। दूसरा, किसी भी समय में मधुमक्खी पेटी को हम लोग अगर देख रेख नहीं करते हैं तो मधुमक्खी का जो वो तल है, निचले तल, उसमें जो है गंदगी जमा होते रहता है, तो गंदगी की वजह से जो है उसमें हो सकता है मोमी कीड़ा आ जाए या और कई तरह के जो है उसमें लग सकते हैं, तो इसलिए पेटी को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। तो कम से कम 3 से 5 दिन, अगर 3 से 5 दिन में नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह में एक बार जो है ज़रूर पेटी की साफ़ सफाई करनी चाहिए।
1: और कोई ऐसा बीमारी वगैरह तो नहीं लगे खास गर्मी में?
0: गर्मी में ऐसा कोई हमारे इस क्षेत्र में जो है बीमारियों का नहीं आता है, लेकिन कई बार कुछ जो है वो थाइसेक ब्रूड वगैरह का आता है, तो हालांकि हमारे इस छत्तीसगढ़ में इस बीमारी का उतना प्रकोप किसी भी किसान के यहाँ या हमारे जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर हम लोगों को इस तरह का लक्षण नहीं दिखा है।
1: बहुत अच्छा बात है। तो
0: जी
1: भाई
0: जी
1: जो कृषक
0: जी
1: हैं हमारे उनकर खातिर, तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी दिया। आशा है किसान भैया बहनी मन नेला जरूर उपाय कर ही मधुमक्खी व्यवसाय कर रहते हैं, मधुमक्खी पालन कर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम, और किसान भाइयों को भी नमस्कार।

किसान भैया बहनियों, जेकस मौसम करवट लही सा है ना, तो प्रतिदिन किसान भैया बहन मिलना मौसम संबंधी अपडेट में निगरानी रखना बेहद जरूरी है। एकर अलावा गरज चमक और आकाशीय बिजली से खड़ा फसल, पेड़ और स्थायी कृषि संरचना भी नुकसान हो सकता है। उला भी ध्यान दे, खराब मौसम के दौरान कृषि कार्य अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। तेज हवा और अचानक वर्षा के कारण कमजोर फसल में भी जो गिरावट होते दिख सकता है। एकर अलावा खेत में कार्यरत किसान और पशुमन खातिर आकाशीय बिजली भी खतरा बन सकते हैं, तो एकर भी पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किसान भैया बहनी खातिर जो मौसम कर जो आधारित कृषि सलाह है कि गरज चमक कर दौरान कृषि संबंधी सभी कार्य ला रोक देना चाहिए, फसल ला सहारा देके गिरे से बचाना चाहिए, उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव स्थगित करना है, खेत में जल निकासी कर व्यवस्था रखें, कटा फसल ला सुरक्षित स्थान में रखें, पशुमला छाया

और पानी उपलब्ध कराएं और बिजली कर बचाव से भी उपाय ला अपनाएं। एकर अलावा जो हमार किसान भैया बहनी मन है ओमन ला जो भी जैसे सलाह दिया जाते कि गरज चमक कर चेतावनी अवधि में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव ला भी स्थगित रखें। अब देखिए जैसे जो हमारे पशुपालक और किसान भैया बहनी मन में हरा चारा और पशु मन का टीकाकरण कर व्यवस्था समय पे सुनिश्चित करना चाहिए। कृषि यंत्र और मरम्मत कर रख रखाव भी पूरा ध्यान देना चाहिए। खेत में जैविक खाद और गोबर खाद का प्रयोग बढ़ाएं जेकर से मिट्टी कर उर्वरकता बनल रहे। अब देखिए तो आज कर जो हमार मंडी भाव गति चलब तो आज कर हमार मंडी भाव है गेहूँ 2511 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों है 6000 रुपये प्रति क्विंटल, हरा मिर्च है 5400 रुपये प्रति क्विंटल, चना है 2600 रुपये प्रति क्विंटल, कोदवा है 2600 रुपये प्रति क्विंटल। तापमान कर गोट करब तो आज कर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। कालीकर जो अनुमानित तापमान है अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। अब देखिए जाते जाते जल्दी से आज कर सवाल बताए देता हूँ कि धान कर थरा करे कर उचित समय का है, जवाब ल चिट्ठी पत्री चाहे मेल कर माध्यम से दे सकता। तो आज कर चौपाल मैत्री तिजई लबी दे स्वच्छ रहा स्वस्थ रहा राम राम।

0: अभी ग्रामीण भैया बहनों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम लीजिए, अब सुनिए प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की है।

जय जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम के संग मैं स्मिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार हा पाछू 26 मई के 12 बच्छर पूरा करीस। 26 मई 2014 के नरेंद्र मोदी हा प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। प्रधानमंत्री बने के बाद 12 बच्छर के दौरान श्री मोदी हा देश के हित में कतकुन बड़े फैसला करीन हे। एमा जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 ला खत्म करना, वस्तु और सेवा कर GST, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, अग्निपथ योजना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण,

0: नागरिकता संशोधन कानून नवा शिक्षा नीति संघरा कतकुन फैसला शामिल हे। उन्हें श्री मोदी के कार्यकाल में कतकुन जन कल्याणकारी योजना घलो लागू करेगी हे। एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में भारतीय जनता पार्टी डहर ले छत्तीसगढ़ संघरा देशभर में 5 ले 21 जून तक 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के थीम में अभियान चलाए जाही। यह अभियान के उद्देश्य मोदी सरकार के 12 बच्छर के बड़े उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना और विकास के कामला लोगन तक पहुँचाना है। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मन हा लोगन के घर में जाके उखर मन ले गोठ बात करके सरकार के योजना के जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बधाई दीन है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई में भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में प्रवेश करे है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पोस्ट कर श्री साय हा कहिन कि पाछू 12 बच्छर में श्री मोदी हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावनाला केंद्र में राखिन और निश्चित करिन कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनखे तक पहुँचाए। उमन कहिन कि गरीब किसान माइलोगिन युवा वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए के जौन संकल्प प्रधानमंत्री हा ले रहिन वह आज देश में दिखत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में श्री मोदी के नेतृत्व विशेष रूप ले प्रेरणादायी रहे है। कई बच्छर तक नक्सल हिंसा ले प्रभावित बस्तर और वनांचल क्षेत्र में आज विकास विश्वास और जन कल्याण के नवा धारा दिखत है। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा मोबाइल कनेक्टिविटी बैंकिंग सुविधा और शासकीय योजना के पहुंच दूरस्थ जनजातीय अंचल तक निश्चित हुए है जेखर ले लोगन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए है। श्री साय कहिन कि प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना हर घर जल जन धन योजना और डिजिटल इंडिया योजना जैसन योजना ले गरीब किसान मातृशक्ति युवा और जनजातीय समाज के जीवन में आत्मविश्वास के संचार हुए है। उमन कहिन कि योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुँचाए के प्रधानमंत्री के सोचा शासन ला ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी हा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ला सिर्फ नारा भर नहीं रहन दिन फिर ओला व्यवहार और नीति के आधार बनाइन। मुख्यमंत्री हा कहिन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व हा देश ला सिर्फ आर्थिक रूप ले मजबूत नहीं बनावत है फिर सांस्कृतिक आत्मगौरव राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी की भावना ला घलो नवा ऊर्जा देवत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि छत्तीसगढ़ सरकार हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जन कल्याण सुशासन और अंत्योदय के संकल्प ला आगू बढ़ाए बर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार यह निश्चित करत है कि केंद्र सरकार की योजना के फायदा प्रदेश के आखिरी मनखे तक पहुँचाए और विकास के फायदा समाज के हर वर्ग ला मिलाए। श्री साय कहिन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र बने के संकल्प ला नवा ऊंचाई तक पहुंचा ही। ता अभी आप मन सुनत रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एकरे संग स्मिता शर्मा के जय जोहार।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। रात्रि के 8:05 हुए हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, वक्त है सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का। इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं हाजिर हूं पद्मना।

साहब शर्मा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म प्यासा सावन का ये गीत है। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनाने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश

से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य, आमगसी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर सरगुजा से मुनीश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजित कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धर, घनश्याम भार्गव, बाबा गौरी, हसन सिक्का, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, मुंडाटोला डोंडी लोहारा बालोद से डोमेंद्र नेगताम, गंगेश्वरी चंचल, कामेश और माहिर नेताम, ग्राम पड़ोली पोस्ट धौरपुर लुंड्रा सरगुजा से प्रथम प्रफुल्ल कैरव, गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार, अनुजनगर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता धिया, काव्या और मंजू राजवाड़े, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलामन सिंह पेगरा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म प्यासा सावन का ये गीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गायकी से सजा एक और गीत आइए सुनते हैं, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है उत्तम जगदीश का, फिल्म का नाम है वारिस। इस गीत के लिए सोशल मीडिया से हम तक फरमाइश पहुंची है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। ग्राम पेपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, सुनील कुमार, संजीव केवट, चितरंजन यादव, मनीष कुमार साहू, तेज कुमार साहू, अंबिका प्रसाद किशोरवानी, रविशंकर राजवाड़े, गंगेश्वरी भास्कर, कविता माझी, सुभद्रा केवट, श्वेता, कुलदीप, सुरुचि कश्यप, राधा वर्मा और दुर्गेश्वरी। दयानंद भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्कीन, ऋतिका वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही और प्रियांशी। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवदन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, सोमारसाय कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या। बाबाकुटी रायगढ़ से लव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई सुफियान, अनस ऐजा, अल्फिया सराफ। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, आफिया और पोतरा मुस्तफा खान। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल। चंडीगढ़ से सतीश अनेदा, विमला अनेजा। कटरा चांद खामौरी मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर।

बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू और स्वाति मौर्य। ग्राम खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन बारासा। चार डोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म वारिस का ये नगमा।

सफेदों सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो लवली, रजत लव खन्ना, कुश खन्ना और उनका पूरा परिवार, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राहिशमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर सिद्धांत लाडला टुकटुक गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर सुमित कुमारी ध्वनि, ग्राम अमना जिला हमीरपुर हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर निर्मला विशाल सोपान तायड़े नारायण इंगले, पंजाब जिला बखर मोहम्मद हफीजुर रहमान हबीब मलीब खलील और अली रहमान, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप गोगुलानी जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा, ग्राम पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग ठेलक तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन, रायपुर से विनोद वंडलकर वीणा और विविधा, ग्राम चौरदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमिला प्रियंका दीपक खुशबू और ज्योति ठाकुर की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं तिलक राज का लिखा गीत राम लक्ष्मण की बनाई धुन पर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तराना।

शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म तराना का ये गीत आपने सुना। सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आज मैं हूं आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तेरी मेहरबानियां का ये गीत। शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सोशल मीडिया के जरिए हम तक भेजा है पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र सीमा, अनमोल और साहिबा गुप्ता, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, गुजरात पटन से धीरज बी रबारी, सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा, इसे फिर से सुनिए, मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा, नवाज हसन, नवाज बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दिव्याना, भोला कॉलोनी घरोंडा करनार हरियाणा से विजेंद्र कुमार, जयजान कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष होगी और बब्बू डब्बू, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा।

जय सागर वालुजा सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेल्डी से, नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस और जय लाम से। तो आइए सुनते हैं फिल्म तेरी मेहरबानियां का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म कस्मे वादे का ये दो गाना। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को सुनाने के लिए अनुरोध किया है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और उनका पूरा परिवार, मां मतिन क्लब पचरा पोड़ी उपरोड़ा कोरबा से ओम प्रकाश यादव, संतोष, तारा, सरोज, संध्या, साक्षी, गया प्रसाद, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून, मंगलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी और गजेंद्र कुमार, बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दुबिहार नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म कस्मे वादे के इस गीत के साथ ही इंस्टा फरमाइश का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचारों का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना

0: योजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार

0: रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों

0: शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction

0: कार्यक्रम के आरंभ में आपने श्रेया घोषाल को फिल्म कबीर सिंह में सुना। गीतिका था इरशाद कामिल ने और संगीत था अमाल मलिक का।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जैकपॉट से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है तुराज ने और संगीत है शरीफ तोशी का।

कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं मोनाली ठाकुर को फिल्म लुटेरा में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: मोनाली ठाकुर के गाये फिल्म लुटेरा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
4: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
2: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
5: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर

0: हैं और आईसर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खास करके कुरड़ी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेढ़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं इस समय मौसम विभाग की तरफ से, हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि
1: जी
0: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है। और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण पैदी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार

0: 5 लोग का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर जो मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पर बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
2: अगर धान की सब कुछ क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उस ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहां पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है
1: जी
2: और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और

0: वो हमारे प्रयास रहेगी, किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है
1: बिल्कुल
0: पानी को
1: डबास जी,
0: सब्जियों और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं। और
1: जी
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है?
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या क्योंकि अगर तो और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशंस होती हैं तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशंस होती हैं तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करना।

0: साथ साथ में फास्फोस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है, और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स अलार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: टपाल
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर रहता वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती हैं, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसको एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है, और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है। तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या

0: मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है, और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है, और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है, और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी है, देखिए पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहा है उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं, और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके
1: जी
2: पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मानसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के

0: ये संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है।
2: कार्यक्रम चर्चा का विषय है। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज मैं आपके साथ हूं पद्मनाभ शर्मा। तो श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। गीतकार हैं अनजान और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इसे ईमेल से सुनना चाहते हैं दिल्ली से प्रतिभा और स्वीटी, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे और पुष्पाताई नारे, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर और कुशल शाह, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से प्रकाशपुर गांवकर, सुषमा सोहम प्रांजलि अंशुमन ओवी सदानंद सुभाष नीरज विराज योगिता सुवर्णा, एयरपोर्ट रोड छत्रपति संभाजीनगर से प्राजक्ता दत्त और प्रसाद भाग्यवान, सरगुजा मैनपाट से सोनम थापा, असमा फातिमा आदिबा, सरफुद्दीन बेलदार, असलम अकरम, मिराज अहमद, वसीम अकरम, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद पोपुरानी, रानीगांव नगरी जिला धमतरी से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।

जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, यामिनी, उमा तिवारी। रायपुर से विनोद वंडलकर, मीणा और विविधा। कोड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमाक्ष। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, राशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़े। आकुट से विनायक पिंडे, श्रीमती मंगला, शुभम बेड़े। मन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। ग्राम पाहरा अहिवारा, जिला दुर्ग से पोषण बनछोड़, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बनछोड़। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। शाहजीनगर देगलोर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। तहसील नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश, सचिन और धानोरा विटाली। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी के ईमेल फरमाइश पर। गुलजार का लिखा गीत सुनिए आर डी बर्मन के संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की आवाजों में फिल्म त्रिशूल से। गीतकार हैं साहिल उद्यानवी और संगीत खयाम का है। इस गीत को सुनाने के लिए हमें ईमेल किया है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव और मास्टर अल कबीर, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, ग्राम अनुजनगर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता, धिया राजवाड़े, काव्या और मंजू राजवाड़े, ग्राम लोहागढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज पोत्रे, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुता सुवर्णम आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, ग्राम पडौली पोस्ट धौरपुर लुंड्रा जिला सरगुजा से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कैरव खंडा, गर्वी, अनुज, सुनैना दास और वेद कुमार।

ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर मोहम्मद शाकिब पवार, अल्तमस बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, साफिया रहान खोखर और मोहम्मद हसनैन पवार, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, देवरी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश कन्नूलाल रजक मुरली क्षत्रिय, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनबी खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक मोहम्मद उमर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सबकी ईमेल फरमाइश पर किशोर कुमार को फिल्म जहरीला इंसान में सुनिए। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मनहर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिमान का ये गीत। इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

लता मंगेशकर और मनहर के गाए फिल्म अभिमान के इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ शर्मा ने। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 और 50 सेकंड्स हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आपके फरमाइशी खातों पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अभिलाषा से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी बर्मन का, और पसंद करते हैं वरुण जोलका से महेंद्र सरकटे, विजया मिलिंद, चांडूर बिस्पा तालुका नांदुरा बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई ललिता संजना गणेश और कार्तिक खड़से। आपके साथ हैं मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद्य।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर चिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक और मीका विरक, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता और टुक टुक गवाणकर, आप सबकी फरमाइश पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, कल्याण जी आनंद जी के बनाई धुन पर लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गोपी।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म अन्नदाता से। गीतकार हैं योगेश और संगीत है सलील चौधरी का और फरमाइश करते हैं बलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, श्री शिंगी ऋषि महानदी सिंहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी, सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन, देवेंद्र कुमार, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, रजनी देवी मास्टर, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी और वीरेंद्र सारथी, आपके साथ हैं ब्रिजकांत सारथी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति, नवनीत राय। डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार तामुरिया, डॉली बेबी पूजा, प्रभादे।

आवाज में ये रात फिर न आएगी का ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने, संगीत है ओपी नैयर का और पसंद करते हैं। ग्राम गणेश धाम परसुली डोंडी लहरा बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास और धनवंतिन, आपके साथ हैं मोतिन बाई मानिकपुरी, डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभी राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल, गडिया मौजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, बेडी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज़।

0: महेंद्र कपूर के गाए फिल्म ये रात फिर ना आएगी के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन अब समाप्त हुआ। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ ने। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब समाचार, थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और

नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: promoting economic empowerment, strengthening financial inclusion, improving access to essential services, and ensuring effective grievance redressal mechanisms. And in badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hong Yang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ruthvika Garde defeated Chinese Taipeis Yang Hu Swan and Hu Ling Fang. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अपनी कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में सुबह 5:51 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय

0: Day defeated Chinese Taipei's Yang Po Swan and Hu Ling Fang. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अपनी कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में सुबह 5:51 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।